48 भाद्रपद माह की तिथि 27 तदनुसार 18 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले होंगे। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress, AITC, not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passports Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years.

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण और साथियों को।

और अभी अगली रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में। और अब ये अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोता सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत। आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

हम आकाशवाणी के चाय वासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में श्यामानंद झा के स्वर में गाए चंद गीत। सुबह 7:00 सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। समाचार प्रभात में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह के 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:40 पर हम प्रसारित करेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इस विषय आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर, साथ ही कुछ साहित्य पर जानकारी हम रखेंगे। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह के 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम के 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार को। कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनेंगे शाम के 5:30 पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर आप चर्चा सुनेंगे, साथ ही पशुपालन से लाभ एवं चुनौतियां, इस विषय पर आप एक परिचर्चा सुनेंगे, भाग लेंगे इस कार्यक्रम में डॉक्टर RR गोगल, प्रेमलाल कलिंजिया, चंद्रशेखर कमल चंद्र मुर्मू और इस कार्यक्रम के संचालन करता होंगे सुरेश चंद्र मुर्मू। शाम 6:00 सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा आप सुनेंगे। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, इस पर चर्चा होगी, साथ ही तकनीकी शिक्षा पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी देंगे शंकर सिद्धू। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। विश्व जल निगरानी और विश्व बाल दिवस पर इस चर्चा आप सुनेंगे, साथ ही मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम में, जहां से शाम सात बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम के 7:15 पर सुनेंगे। रात्रि 8:00 सुनेंगे कर्टन राइजर जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों 2026 के 20वें संस्करण पर आधारित कार्यक्रम। आप ये कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आठ बजकर 30 मिनट पर सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।
समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर। रात्रि के 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 11:00 और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। और अब सुनते हैं सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्यामानंद झा के गाए चंद गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से सुगम संगीत में श्यामानंद झा के स्वर में चंद गजल।

हम आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाय बासा।

सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की इन अनमोल वचन के साथ ही कार्यक्रम जोहार चायवासा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति गीत, मन्ना डे की आवाज़ है, फिल्म का नाम है काबुलीवाला, गीत रचना प्रेम धवन है, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बचपन का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बचपन का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। गीत रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बाबू का ये खूबसूरत सा गीत। मजरूह के बोल है, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

मेरा साया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजा मेहंदी अली खां की रचना थी, संगीत दिया था मदन मोहन ने। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर के बोल है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म किस्मत से। आवाज़ें हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की। SH बिहारी की रचना है, संगीत दिया है OP नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म किस्मत का गीत आशा भोसले शमशाद बेगम की आवाज़ों में। SH बिहारी की रचना थी, संगीत दिया था ओपी नय्यर ने। और अब सुनते हैं फिल्म वक्त का गीत, मन्ना डे की आवाज़ है, साहिर की रचना है और संगीत दिया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वक्त का गीत मन्ना डे के स्वर में। साहिर की रचना थी, संगीत दिया था रवि ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म हंसते जख्म का ये गीत। कैफी आज आजमी की रचना है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म धर्मा का गीत, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बर्मा मलिक की रचना थी, सोनिक ओम ने संगीत दिया था। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है फिल्म अमरदीप से। राजेंद्र कृष्ण की रचना है, संगीत दिया है श्री रामचंद्रन ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसी के साथ श्रोताओं, समाप्त होता है हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
6: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
8: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
6: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
9: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rejinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
13: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
12: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
14: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent members from the Lok Sabha include Tejaswi Surya, Nishigan Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From the Rajya Sabha, Harshvardhan Shingla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy are among the members of the committee. The committee is required to submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
12: The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website https://ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on the September 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. The agency had earlier issued a notice on August 16, 2026 regarding the conduct of the test. Candidates who appeared in the examination can now log in to the registration portal using their application number and password to view the final answer keys of their respective subjects. The NTA has advised all candidates to visit the official UGC NET website regularly for the latest updates related to the examination. For any clarification, candidates may contact the NTA help desk through the contact details provided on the website. The Finance Ministry will organize a two-day conference on financing India's journey towards Vikasit Bharat in New Delhi, beginning today. The ministry said that the conference will be held for finance ministers and finance secretaries of the states and union territories. Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with several chief ministers and finance ministers from the states, will be present during the conference. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public life. His journey has been defined by the mantra of service to the nation through public service and continued dedication, which remains steadfast even today. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of a developed India by 2047. This commitment, through inclusive development and social empowerment, is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the end of Naxalism.
6: In Chhattisgarh's Bastar region, following the end of Naxalism, the sound of school bells is once again being heard in place of gunfire. Security camps in the Bastar region are being transformed into modern public service centers named Shaheed Veer Gundadhur Seva Dera. Bastar Olympics and Bastar Pandum reflects the changing picture of Bastar. Prime Minister Narendra Modi said that areas which once witnessed terror are now providing opportunities for talent.
7: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं बस्तर ओलंपिक्स की धूम है यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है
6: द गवर्नमेंट्स फर्म रिजॉल्व हैज रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ माओइस्ट सरेंडरिंग इन बस्तर एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू मेक दीज फॉर्मर माओइस्ट इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल ट्रेनिंग वन सच फॉर्मर माओइस्ट लखमू पोयाम ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट सेड दैट व्हाइल वर्किंग विद द नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन ही ऑलवेज लिव्ड अंडर द फियर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ ही इज नाउ अंडरगोइंग स्किल ट्रेनिंग एंड लीडिंग अ पीसफुल लाइफ
8: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के
6: After surrendering, we are living here now and we feel good. When we were there, we always lived in fear that we might be killed or shot. Here, we can eat, drink, sleep and work peacefully and meet and interact with everyone. We feel good living here. The stories of hundreds of surrendered Maoists like Lakhmu Poyam show that following the end of Naxalism, a new dawn of development is emerging in Bastar. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
12: This is Akashwani giving you the news.
10: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
12: External Affairs Ministry has notified the Passport Amendments Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft, Tejas Final Operational Clearance Twin-Seater Trainers and HTT-40 Basic Trainer Aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation Helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. The Defense Ministry said the visit reflects the importance attached by both the countries to sustained military diplomacy and army-to-army engagement. The Trump administration has approved visas for top Iranian officials, including the President and Foreign Minister, to attend next week's UN General Assembly high-level meeting in New York, even as the two countries are locked in a stalemated war. A report.
15: The State Department said that it has approved visas for Iran's core delegation along with essential staffers to participate in the UN meetings. The core delegation

0: फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
3: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
2: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
3: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे रंथू बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है, इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
6: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
7: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
6: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
7: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
6: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
7: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
6: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित। कार्यकर्ताओं ने जलाया आशीर्वाद का दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JSSC CGL समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर होगी अहम सुनवाई। टाटा नगर में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो को रेलवे बोर्ड की मंजूरी। 383.78 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 21 सितंबर तक मॉनसून रहेगा सक्रिय। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
9: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
8: श्री मोदी ने कहा कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन सेवा दिवस के तहत रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद का दिया जलाया गया।
10: आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने दिए जलाए हैं। मोदी जी ने देश के लिए जो मार्गदर्शन किया है लोगों का, उसके लिए पूरा देश अपनी कृतज्ञता के साथ उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जो रांची के इस फ्लाईओवर में जो उनके ही द्वारा अनमोल उपहार रांची की जनता को दिया गया है, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं मोदी जी को ऐसे ही चिरायु दीर्घायु बनाए रखे, ऐसे स्वस्थ तन के साथ वो हमारा नेतृत्व करे।
8: NTPC नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत सेवा भवन में स्वच्छ

0: सदस्यता शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई, जिसमें कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों ने भाग लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की सुविधा और परिसर की स्वच्छता के लिए यात्री सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किए गए। झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेएसएससी सीजीएल समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज की सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल जवाब और सीआईडी जांच रिपोर्ट पर अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के निर्माण को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 383 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च होंगे। डिपो बनने से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इससे रेल आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में लंबे समय से लंबित बाईपास सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि रैयतों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बाईपास के निर्माण से जिले में यातायात की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।
1: कुछ राशि के अभाव में और भू अर्जन की प्रक्रिया कुछ लंबित होने के कारण एक साल से उसमें काम थोड़ा डिले हो गया था। आधी रोड बन गई है, बाकी आधा काम जो बचा हुआ था तो अभी हम लोगों ने उसको रिव्यू करके की प्रक्रिया को पुनः हम लोगों ने शुरू कराया है और अभी बिल्कुल हम लोग शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक रोड बन जाएगी।
0: सरायकेला खरसावां के खरसावां थाना क्षेत्र में बड़ा बाबू चौक के पास गोली चलाने के एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 गोली, 2 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद की गई है। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के सौदे राय सोमटोला गांव में आज वज्रपात की चपेट में आने से 38 वर्षीय धुना बंडिंग की मौत हो गई। जिले के मारंगहादा के बुरुहातु गांव में भी वज्रपात से 13 मवेशियों की भी मौत हो गई। इधर दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के नरगंजो के समीप देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। और अब मौसम का हाल। आज रांची समेत सभी 24 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य में 21 सितंबर तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है। राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने बताया कि मैच के आयोजन और दर्शकों की सुविधा को लेकर प्रशासन के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
2: हर इंटरनेशनल मैच के पहले जो तैयारी होती है उसकी तैयारियां ऑलरेडी हो रही है। जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है, टिकटिंग की जो व्यवस्था होती है, एजेंसी का चयन होता है, जिस तरीके से फूड के स्टॉल्स होते हैं, तो ये सारी बातें वहां पे हो रही है। और पब्लिक की सुरक्षा को लेके हम सारे लोग हमेशा गंभीर रहते हैं। प्लानिंग हो रही है कि जो भी लोग वहां आए उनको कोई असुविधा नहीं हो।
0: पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए, जबकि जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर और 1 गेंद में 94 रन पर सिमट गई। और अब प्रमुख अखबारों की वेबसाइट की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों के वेबसाइट ने भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की खबर को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सहायक आचार्य परीक्षा का संशोधित रिजल्ट रद्द, 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का आदेश। दैनिक भास्कर लिखता है, एक कॉल पर 4 घंटे में मिलेगा रक्त, राज्य सरकार ने किया MOU। दैनिक जागरण ने लिखा है, 31 साल पहले थी 100 रुपए की रिश्वत, झारखंड में 75 साल की उम्र में पूर्व रेलकर्मी को जेल। वहीं हिंदुस्तान की सुर्खी है, 60 साल पुरानी बस्ती पर चला बुलडोजर, पथराव करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का सेवा संकल्प अभियान शुरू, रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित, कार्यकर्ताओं ने जलाया आशीर्वाद का दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JSSC CGL समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर होगी अहम सुनवाई। टाटा नगर में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो को रेलवे बोर्ड की मंजूरी, 383 करोड़ 78 लाख रुपए होंगे खर्च। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 21 सितंबर तक मॉनसून रहेगा सक्रिय। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है, रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
4: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
3: विटामिन ए? वो क्या होता है बहन?
4: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
3: 4 वर्ष।
4: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ, ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम्हारी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
7: क्या बताऊं भाई, कल माताजी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
6: अरे डायल करो 104 नंबर।
7: वो क्या है भाई?
6: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इसमें
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। हमारे केंद्र से प्रसारित है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत बसंत महतो और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में, कुरमारी लोकगीत बसंत महतो और साथियों के स्वर में।

बसंत महतो और साथियों के गाए इस गुरमाली लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

0: कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में हम विभिन्न विषयों पर जानकारी देते हैं, समसामयिक विषयों पर, साहित्य पे, उसके बाद पर्व त्यौहार हुआ, दिन दिवस, पखवाड़ा, इन सारे विषयों पर हम इस कार्यक्रम में जानकारी देते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित बातें भी हम रखते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है। चलिए कुछ बातें इस पर हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये हमारा हर वर्ष आज ही के दिन यानी 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर जो लैंगिक भेदभाव है ना, उसको खत्म करना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव को खत्म करना। साथ ही यह दिन समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले समान वेतन के अधिकार को बढ़ावा देना भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन की शुरुआत लैंगिक वेतन अंतर को खत्म करने के लिए की थी। दुनिया भर में औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। अवैतनिक काम महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक समय घर के कामों में और देखभाल में बिना किसी वेतन की बिताती हैं। तो सभी क्षेत्रों में आर्थिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए इस आज का जो ये दिवस है ये मनाया जा रहा है। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। ऐसे में उन किसी तरह के जो भेदभाव है उसे मिटा करके समान वेतन की जो ये आज का जो दिवस समान वेतन को लेकर के मनाया जा रहा है, इसका ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो बहुत अधिक कहा जाए तो जो अपने अधिकार जो पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले जो समान वेतन के अधिकार को बढ़ावा देता है, इस पे ध्यान रखते हुए आज का ये दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए आज के इस दिवस को सार्थक हो यही कामना करते हैं। साथ ही महिलाएं सशक्त होकर के जो कार्य कर रही हैं और अधिक सशक्त हो, अपने जो अपना जो कर्तव्य है अपने परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, दायित्व को लेकर के, जितने अधिक सशक्त हम महिलाएं होंगी उतना ही हमारा परिवार सशक्त होगा, समाज मजबूत बना रहेगा। तो आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

संदेश के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। और अब अगली जानकारी हम ले, इससे पहले आइए सुनते हैं ये अच्छा सा प्यारा सा देशभक्ति गीत। इसे हमने लिया है आदमी और इंसान से, आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

और अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर और साथियों को। इस तरह से श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम विविध रंगों से, विभिन्न जानकारियों के साथ सराबोर रहता है। साहित्य से संबंधित हम लोग जानकारी देते हैं। आज डॉक्टर भगवान दास, जो एक प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, उनका उनकी आज पुण्यतिथि है। तो आइए उन पर कुछ दो चार शब्द हम, कुछ जानकारियां हम रखते हैं। देश की भाषा संस्कृति को मजबूत बनाने में डॉक्टर भगवान दास महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। स्वतंत्र और शिक्षित भारत के मुख्य संस्थापकों में इनका नाम लिया जाता है। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम शाह माधव दास था। उन्होंने, डॉक्टर भगवान दास, बचपन से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साँचे में ढले गए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उस समय अंग्रेजी शिक्षा, भाषा और संस्कृति का बहुत ही प्रसार प्रचार था, किंतु भगवान दास ने अंग्रेजी के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। कई भाषाओं की शिक्षा से वे अपने आप को सराबोर रखा, से हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया उन्होंने। साथ ही साथ भगवान दास बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। वे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। कहते हैं 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उसके बाद वे कम उम्र में, यानी 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने MA की उपाधि प्राप्त कर ली थी। MA की परीक्षा उत्तीर्ण करके पिता के कहने पर उन्होंने, मतलब उनको इच्छा नहीं थी कि वे डिप्टी डायरेक्टर बने, लेकिन पिता की चाहत को पूरी करते हुए उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के पद पर सरकारी नौकरी की। नौकरी करते हुए भी उनका ध्यान अध्ययन और लेखन के कार्य में ही लगा रहा। वे अभी पढ़ना और लिखना उनका जो एक शौक रहा, वो इसी शौक में, इसी चीज को वो बरकरार रखें। प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने वाराणसी में कॉलेज की स्थापना की। वह ऐसे कॉलेज स्थापना करना चाहती थी, हमारे एनी बेसेंट ने ऐसे कॉलेज की स्थापना करना चाहती थी जहाँ पर अंग्रेजी प्रभाव से वो पूरी तरह से मुक्त हो। जैसे कि डॉक्टर भगवान दास को इसका जैसे ही पता चला कि इस तरह का कॉलेज कोई खोलना चाहता है, तो उस कार्य में तन मन धन से और अपने महान उद्देश्य को सफल बनाने में उस योगदान दिए। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास ने भी उनके साथ मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका दिया। पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं, उसके प्रथम कुलपति भी बने। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत भाषा में 30 से भी अधिक पुस्तकों पर लेखन किया। साथ ही उन्हें
देश के प्रति अपने कर्तव्य को भी उसी भाव से लेखन की इच्छा साथ साथ समाज सेवा, देश के प्रति समर्पित भाव, देश के प्रति जो कर्तव्य जो भाव होनी चाहिए वो भी उन्होंने निभाया। साथ ही साथ वे देश के भावी नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री भी उन पर शिक्षा, उनकी जो कहा जाए तो उनकी शिक्षा, उनकी इस तरह के सेवा परायण भाव से काफ़ी प्रभावित हुए। साथ ही साथ डॉक्टर भगवान दास ऐसे कई क्षेत्रों में नाम हासिल किए, समाज सेवा से लेकर के देश सेवा, लेखन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कई ऐसे क्षेत्र में योगदान दिए। डॉक्टर भगवान दास का योगदान जितना भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और विकसित करने में माना जाता है, उतना ही योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र को भी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो सारा विश्व एक ही परिवार के हैं कि जो भावना रखने वाले डॉक्टर भगवान दास ने संपूर्ण विश्व के दर्शन और धर्म को प्राचीन और सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। अपने जीवन काल में ही अपार मान सम्मान पाने के बाद डॉक्टर भगवान दास जीवन भर भारतीय संस्कृति

ऋषियों की परंपरा का ही प्रतिनिधित्व का किया। वह गृहस्थ गृहस्थ में थे, लेकिन फिर भी वे एक गृहस्थ सन्यासी जिसको हम बोले उस आधार पर जीवन यापन कर रहे थे। तो उनका आजीवन प्रत्येक स्तर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की वे पुरोधा कहें तो रहे। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भगवान दास की देश सेवा और विद्वता को देखते हुए उनसे सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालने का जो अनुरोध किया गया था, वे उस पद में धर्म दर्शन ये शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी और वे आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। वे उस विनयपूर्वक अस्वीकार किए, जो सरकारी पद उनको मिल रहा था उसे वो अस्वीकार किए और क्या किए, दर्शन धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए आजीवन इसी क्षेत्र में वे शिक्षित रहे। वे कई जैसे कि हम सभी जानते हैं डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतने भारत सरकार की ओर से उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें ये पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न मिलने के कुछ वर्ष बाद ही इनका देहांत 18 सितंबर को 90 वर्ष की आयु में हो गया। आज भले ही डॉक्टर भगवान दास हमारे बीच नहीं है, किंतु भारतीय दर्शन धर्म और शिक्षा पर किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहेगा। तो चलिए डॉक्टर भगवान दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये सुंदर सा प्यारा सा भजन सुनते हैं नंदी दुग्गल और साथियों के स्वर में।

नंदीदुग्गल और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविधा से अब राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुन पा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अलग अलग का यह खूबसूरत सा गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है आर जी बर्मन ने।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है,
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में। अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कोयला से। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ है, इंदिवर की रचना है, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में, और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म ईमानदार से। सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज है। गीत रचना प्रकाश मेहरा की है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

करिश्मा कुदरत का, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानो उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव किंगटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और

0: बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने?

0: हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
1: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
2: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता। उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
3: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की माँ ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की माँ ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: ए, पानी ले आ रहे?
1: कल रात तो फिर भी करा गया।
3: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
1: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
3: दीदी,
1: अरे इनको तो
3: दीदी।
4: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
3: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
4: अरे?
3: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
4: हाँ हाँ,
3: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
4: अब फिर क्या?
3: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
4: रो मत,

0: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
1: जी दीदी।
0: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
1: बिल्कुल चलेंगे।
0: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
1: जी दीदी।
2: जी दीदी।
1: हम सब तैयार हैं।
3: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
4: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
4: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
3: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
4: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
3: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्य क्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी।
2: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
2: सोच रही थी? क्या?
3: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
2: बिल्कुल।
3: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
2: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
3: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
2: हाँ।
3: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
3: आपको नहीं लगता?
2: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
2: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
3: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
2: बिल्कुल।
3: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
2: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
0: Thank you.
1: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
0: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
1: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
0: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
1: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
4: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
5: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत।

0: पांच बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
1: दीदी जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
0: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
2: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना।
1: सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही है, अब हम सशक्त बन रही है।
0: बिल्कुल।
3: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
4: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम के लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रही थी राजदा हुसैन और हिदायतुल्ला, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज, FM 100.5 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जानती है ना मीता, अभी गणपति उत्सव चल रहा है, चारों तरफ धूमधाम से
1: पूरे एक वर्ष गणपति बप्पा के इंतजार करते हैं उनके भक्त जन। हाँ। और उसके बाद 9 दिनों तक ये त्योहार भी चलता है, बिल्कुल नवरात्रे की तरह।
0: नहीं नहीं, 9 दिन नहीं, 12 दिन
1: 12 दिन
0: 9 दिन 14 को स्टार्ट हुआ और 15 को इसका विसर्जन होगा। अनंत चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं, उस दिन विसर्जन होता है। और जहाँ गणेश जी का नाम होता है ना, वहाँ हर काम जो है आसान हो जाता है।
1: विघ्न हरता है, विघ्न हरता है, दुख हरता है और सिद्धि दाता है,
0: सबको तो एकदम मतलब उनका आशीर्वाद मिलता है ना, तो असंभव भी जो है ना संभव हो जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और किसी भी हम नए कार्य करते हैं तो पहले आराधना हम लोग गौरी गणेश का ही करते हैं, गणेश जी की ही पूजा करते हैं। और गणेश जी का स्मरण करने से सारे संकट जो है ना, विघ्न सब है, दूर हो जाते हैं।
1: तो हम भी अपने विघ्न को दूर करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए याद करते हैं अपने आराध्य को, भगवान गणेश को, गजानन को।
0: हाँ।

0: गणपति का आशीर्वाद हो तो फिर दुख की क्या बात हो क्या रेणु जी?
1: बस बस सबका कल्याण ऐसे ही होता रहे, भगवान करते रहे, और वैसा ही आशीर्वाद हमारे मौसम पे भी भगवान पे भरोसा रहे हैं। इंद्रदेव का भी
0: अब भी दो चार दिनों का खुला मौसम मिला था, लेकिन उसमें भी उमस थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, तो फिर इंद्रदेव महाराज मेहरबान हो गए।
1: हाँ, तो रांची का मौसम है ना मिता कि मुख्य रूप से जो है धूप के साथ जो है आज आंशिक बादल और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है।
0: सिर्फ रांची की ही क्यों बात करें हम? हाँ। पर अगर हम पूरे झारखंड की बात करें हाँ। तो कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, बोकारो और दुमका समेत 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोपहर या शाम के समय कभी भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और तापमान भी है वो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है रेणु जी। और तो बारिश भी
1: हाँ आज के दिन जो बारिश की संभावना जो बहुत कम है
0: 10 से 15% तक हो सकती है।
1: हाँ बहुत कम है। तो ऐसे में है कि मौसम का मिजाज तो बदलते रहता है, कभी धूप कभी छांव कभी हवा कहीं पानी और राज्य में जो है 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और रांची का जो न्यूनतम तापमान है ना वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड की संभावना है।
0: बिल्कुल।
1: और अधिकतम तापमान आपने बताया ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड
0: 32 के बीच में रहने की संभावना है। तो एंजॉय कीजिए इस मौसम को भी। हाँ संभल के रहिए, प्रशासन की भी चेतावनी है और हमारी तरफ से भी आपको यही सलाह है कि खंभों के आसपास ना रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, छाता लेकर के चले। अगर खुला मौसम भी हो, धूप दिख रही हो आपको, आप धूप का आनंद लीजिए, सेकिए विटामिन डी भी जरूरी है, लेकिन आप छाते को हमेशा साथ रखिए जब तक अभी बारिश गई नहीं है पूरी तरह से और अभी जाएगी भी नहीं,
1: क्योंकि बारिश बरसात का मौसम है तो अभी आरो
0: भाद्रपद में और भादों के बारे में तो हमारे मतलब माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अचानक से बारिश आती है और जाती है।
1: हाँ, तो वही कल तो देखते देखते हो रहा था ना, अचानक बारिश से तुरंत धूप निकल गई।
0: मैं कहीं बाहर निकली हुई थी। हाँ। मैं घर लौटने की प्रतीक्षा में थी, मैं बादलों को देख रही थी, मौसम बड़ा सुहाना, बस जैसे ही उठने को मतलब कुर्सी मैंने छोड़ने को सोचा और तब तक बारिश की वो बूंदें आई इतनी मोटी मोटी की लग रहा था कि ओले पड़ रहे हैं
1: एकदम।
0: ये रांची की बात थी। हमारे जो श्रोता दूर जगहों से सुन रहे हैं, आप अपने शहर का मौसम का हाल हमें अपने पत्रों से बता सकते हैं, हम वो भी सुनेंगे।
1: तो मीता मौसम का जो भी मिजाज रहे, मौसम तो आएंगे जाएंगे और मौसम ये जो सुहाने आ गए ना तो हम लोग उसका आनंद लेते चलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गीत संगीत का माहौल बना रहे और क्या।
1: हाँ।

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल्स पीएनजी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और रेणु जी, अब हमें पलटना चाहिए इतिहास के पन्नों को।
4: हाँ, तो इतिहास के पन्नों से जानते हैं आज क्या है, क्या घटनाएं घटी देश विदेश में। तो 2007 ईस्वी में कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जीवी मिश्रा को विशेष सम्मान से नवाजा गया था आज के दिन। और
3: 2008 में शोभना भरतिया
4: एचडी बिटनिया की अध्यक्ष
3: नियुक्त हुई।
4: हाँ, 2003 में अगरतला और ढाका के बीच पहली बस सेवा की शुरुआत हुई थी।
3: और 18 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है रेणु जी।
4: हाँ?
3: आज हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समान भुगतान दिवस।
4: अच्छा,
3: इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ये बहुत जरूरी भी है।
4: हाँ?
3: संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 सितंबर को वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच वेतन में होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है और जो समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना है। भाई, इसमें तो हम महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये नहीं होने से एक बहुत ही दुख का एहसास होता था।
4: जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए
3: दे, तो इसीलिए मनाते हैं हम। हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस भी है।
4: हाँ, तो उस पर तो बातें करेंगे ही, उस पर और फिर बाद में बातें करेंगे। और आज के दिन जानती है नमिता, 18 सितंबर 2016 को पाक सीमा में घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को किया निस्तनाबूत। उरी में आतंकी हमला हुआ था।
3: हाँ, आतंकियों ने उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और उरी हमले की
4: बरसी पर
3: वो भारतीय सेना के बहादुरी को हम सलाम करते हैं, अपने शहीदों को नमन करते हैं और अपने सैनिकों के लिए हम ढेर सारे सम्मान के साथ ये गीत प्रस्तुत करते हैं।

0: हम दिवस की बात कर रहे थे रेणु जी।
1: हाँ आप बताएं भी ठीक है, आज बासी बस भी है।
0: बिल्कुल आपने रोक दिया था मुझे, हाँ, क्योंकि आपको ढेर सारी बातें करनी थी बास पे, है ना।
1: बिल्कुल तो है ना कि हर साल आज प्रमुख रूप से जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है आज के दिन, और बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन ये वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ना वो मनाया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके फायदे इतने सारे हैं, हाँ? कि लोगों को जानना जरूरी है। हाँ? बांस है जो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो पर्यावरण संतुलन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभाता है।
1: और बांस सदियों से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी आ रहा है।
0: बिल्कुल, इसकी शुरुआत 2009 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 8वें विश्व बांस कांग्रेस के दौरान की गई थी। और इसके फायदे आप बता दीजिए।
1: हाँ जानती है नमिता, इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में, और झारखंड में खासकर उसका अचार भी लोग छोटा छोटा बांस का ये बनाते हैं ना,
0: संधना बोलते हैं उसको, बस्करीर भी बोलते हैं, संधना भी बोलते हैं,
1: उसका अचार
0: बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। और वो मतलब मुझे लगता है ना कि स्वास्थ्य के लिए भी
1: बहुत अच्छा है,
0: उसको आप भून कर खा सकते हैं, उसका अचार डाल सकते हैं।
1: हाँ तो काफी दिनों तक चलता है,
0: और
1: यहाँ बनाते भी हैं लोग, अभी भी बाजार में इस मौसम में भी मिल रहा है, इसका सीजन है, तो इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने, जरूरत की वस्तुएं बनाने में किया जाता है,
0: अगरबत्ती भी बनाने में उपयोग होता है,
1: जैसे चारपाई है,
0: टोकरी है, सीढ़ी है, मतलब हमारे त्योहारों में तो खास महत्व है। अभी जो हमारा छठ व्रत आ रहा है उसमें टोकरियां बनेंगी, सूप बनेंगे, दौरे बनेंगे, सब तो बांस का ही है,
1: ये होता है। और हिंदुओं में तो अर्थी आदि बनाने में भी ये सब काम किया जाता है।

0: ना उसका तो अथि मरणोपरांत घाट तक पहुंचाया हाँ, भी जाता है, तो इस तरह के बहुत सारा
1: मिलता है हमें अंतिम समय में भी।
0: हाँ, और तो इस तरह से बांस का महत्व तो है ही, और वो बहुत तेजी से मतलब फैलाता है, जैसा बोली ना कि पर्यावरण में काफी इसका तेजी से महत्व है, तो बढ़ाता है और फैलता है, तो इसके कारण हरियाली बनाए रखता है, जंगल में वो तेजी से बढ़ता है।
1: आप हरियाली पर बहुत जोर दे रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप हमारे श्रोताओं को जरूर एक प्यारा सा गीत सुनवाने वाली हैं।
0: बस देखिए, बांस की बात हो, हरियाली हो, तो रास्ता निकलता जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो चलिए हरियाली और रास्ता में
1: दोनों ही तलाशते हैं
0: तलाशते हैं।

0: मीता इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं और जीवन और मरण की बात करते हैं कि आज के दिन, तो आज के दिन जन्म जो है 1931 ईस्वी में आज के दिन श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ थे।
1: श्रीकांत वर्मा नई कविता के दौर के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उन्होंने गीत, कथा और आलोचना के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया।
0: उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह मगध के लिए उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: उन्होंने दिनमान और
0: समीकृति जैसे कई प्रसिद्ध
1: किताबें
0: लिखे हैं। और 1958 ईस्वी में भगवान दास का निधन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री थे। 1957 में सारंगधर दास का निधन हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: 1953 ईस्वी में आशीष सेन का निधन हुआ। वे हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता थे और काफी अच्छे लगते थे वो, नहीं उनकी फिल्में काफी अच्छी होती थी। उनके बोलने का ढंग बहुत अच्छा लगता था लोगों को, हमें भी अच्छा लगता था। और एक बहुत ही मतलब सुखद बोलिए और दुखद दोनों का अजब अद्भुत संयोग है रेणु जी। काका हथरसी जो हिंदी साहित्य के सर्वोच्च हास्य व्यंग सम्राट थे, जिनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था, उनका जन्म 18 सितंबर 1906 का उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था। और संयोग देखिए कि उनका निधन भी 18 सितंबर 1995 को हुआ। तो
0: मतलब जीवन और मरण,
1: अद्भुत संयोग को हम भी मतलब महसूस करते हैं।

0: जीवन में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, मिलते हैं बिछोड़ते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीना यहाँ मरना यहाँ,
0: और जीने के लिए हमको रोजी रोटी रोजगार चाहिए ही चाहिए, हमारी युवा काफी है।
1: जीने मरने के बीच में है जो रास्ता, वो कमाने खाने का होता है रेनू जी।
0: तो कुछ ऐसी बारे में रोजगार संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं,
1: हम अपने युवा श्रोताओं को बता दें, उन्हें भी काफी फिक्र लगी रहती है, कई बार होता है कि बहुत कुछ उनकी आंखों से छूट जाता है, ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह है लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो हम हैं उनकी मदद के लिए, जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहते हैं। IIT BHU ने नॉन टीचिंग के 55 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। IIT वाराणसी ने प्रशासनिक तकनीक पुस्तकालय इंजीनियरिंग और राजभाषा कैडर के अंतर्गत जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और अन्य 55 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को संस्थान के नियमों के अनुसार वेतनमान प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा या पदानुसार निर्धारित वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य है,
0: और आयु सीमा जो है अधिकतम 27 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, और आयु की गणना 24 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी, आरक्षित श्रेणी को छूट दी जाएगी।
1: आवेदन शुल्क है वो ग्रुप बी पदों के लिए सामान्य, OBC और AWS वर्ग के उम्मीदवारों का शुल्क ₹500 है, और ग्रुप सी पदों के लिए शुल्क 250 है। वहीं SC ST दिव्यांग और सभी महिलाओं के लिए ये निशुल्क है।
0: और यहाँ कैसे आवेदन करें वो भी बता देते हैं। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले IIT BHU के समर्थ पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके मांगी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरेंगे। इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। आवेदन के लिए ऑफिशियल लिंक है http://iitbhunt.smart.education.in उपयोग कर सकते हैं।
1: चयन प्रक्रिया होगी वो स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित कौशल परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू या संस्थान द्वारा तय किए जाने वाले चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के आधार पर। और रेणु जी, रोजगार का एक और अवसर होता है पर्यटन।
0: हाँ, जहाँ सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, अरे मानसून चल रहा है और तो हम कहाँ घूमने जाएं।
1: नहीं, रोजगार भी मिलता है पर्यटन से,
0: एकदम उसमें तो मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो
1: गाइड होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं जो वहाँ पे लगाते हैं।
0: जैसे अभी देखिए वाराणसी में अभी लोगों का रोजगार अभी छुटा हुआ है, जो वहाँ बढ़ते हैं गंगा नदी जो उफना गई है,
1: पर खच्चर वाले हैं। हाँ। सभी का रोजगार होता है, नदियों में नाव वाले हैं। हाँ। मतलब रोजगार भी, आपका पर्यटन किसी को रोजगार भी दे सकता है, और आपका मनोरंजन तो करता ही करता है, आपको खुशियां तो देता ही देता है। तो रेणु जी, कुछ एक पर्यटन स्थलों की जानकारी अपने श्रोताओं को दे दीजिए ताकि वो भी चुन सके कि कहाँ जाना है।
0: झारखंड की बात हो रही है, रांची से बात कर रहे हैं, तो झारखंड की वादियाँ जो है ना मानसून में कश्मीर से खूबसूरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, पहाड़।

0: के बीच कलकल -कल बहती नदियां प्रकृति के अनंत संगीत को लयबद्ध सुनाते हैं। सैकड़ों जलप्रपात और मौसम की अटखेलियां कदम कदम पर फैले जंगल, इन जंगलों में बिचरते पशु पक्षी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे रेणु जी, झारखंड की राजधानी रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है।
1: हाँ, और यहाँ के आसपास जो है हुंडरू, जयशाम, पंचघाग और जुहुना जलप्रपातों को देखने के लिए देश भर से सैलानी आते हैं।
0: और आप ना जाए
1: और बारिश के इस खूबसूरत मौसम में आप भी जाइए जंगल, पहाड़ और नदी के पास बैठकर प्रकृति की गोद को निखारिए, असीम शांति का अनुभव होगा।
0: और कैसे आप चुन सकते हैं अपने मिजाज से, बहुत सारे हैं,
1: कैसे आपका सफर कटेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, लोगों के साथ, परिवार के साथ।
0: बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

0: मौसम सुहाना जब आ जाता है ना, और हम लोग का सफर जब कट जाता है ना, तो ऐसे में हम लोग को स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना होता है कि ऐसी जगह पर जाएं जहां हम सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से कर
1: बिल्कुल,
0: सकें,
1: बिल्कुल
0: खासकर ये बारिश के मौसम में।
1: बिल्कुल, बारिश वैसे तो अब निकल रही है लेकिन निकलता हुआ पूंछ भी बहुत भारी पड़ जाता है, तो वैसे में भी संभल के रहने की बहुत जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो ऐसे सालों भर रखना। आप बोलेंगी रेनू जी कि अभी बरसात है, भाई गर्मियों में हम सेहत का ख्याल नहीं रखते,
0: वो रखता है लेकिन इस वक्त विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
1: सालों भर
0: खासकर ना मानसून में जो कई लोगों को है ना जोड़ों के दर्द में जूझते हैं जो इस मौसम में लोग, और ये जो है मौसम ना अर्थराइटिस नहीं करता लेकिन इसके लक्षण बढ़ा सकता है। ठंडे मौसम में जोड़ों का चिकनाई वाला जो साइनोवियल फ्लूड होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे जोड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसके असर घुटनों और कुल्हों पर ज्यादा पड़ता है।
1: अगर पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या है तो मानसून में दर्द बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। कभी फ्रैक्चर, लिगामेंट की चोट या घुटने की रिप्लेसमेंट हुई है तो उनमें भी दर्द या टीस महसूस हो जाती है। धूप ना निकलना भी एक दर्द की वजह बनता है।
0: एसी में काफी देर हम लोग जब बैठते हैं ना तो इसका भी कारण आर्थराइटिस का ये बहुत लंबा कारण हो सकता है, ये स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
1: रेणु जी एक खास बात है जो हम रेडियो पर गानों को बजाते हैं, जानकारियां भी बहुत देते हैं लेकिन फिल्मी दुनिया से हम खास तौर पे जुड़े होते हैं और आज एक मशहूर अभिनेत्री मतलब सुप्रसिद्ध बहुत कला की नायिका दिग्गज अभिनेत्री हैं शबाना आजमी का जन्मदिन है और काफी प्रतिष्ठित प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने व्यावसायिक सिनेमा के साथ समानांतर सिनेमा को भी एक नई पहचान दी है। तो 18 सितंबर 1950 को जन्मी शबाना आजमी अपने अलग हट के करने वाली भूमिकाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। लीक से हटकर करती हैं वो भूमिकाएं
0: और उन्होंने 1974 में फिल्म अंकुर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।
1: धमाकेदार।
0: और उन्हें मुख्य रूप से जो है ना कला और यथार्थवादी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से गिना जाता है।
1: अंकुर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है
0: और भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया।
1: अर्थ, खंडहर, पार, मासूम, मंडी, फायर, गॉड मदर और हाल के वर्षों में रॉकी और रानी की एक प्रेम कहानी जैसे कई अभिनय फिल्मों में शानदार अभिनय उन्होंने किया है।
0: तो चलते चलते सुनते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल
0: उन्हीं पे एक गाना
1: और आप हमारा
0: उन्हें जन्मदिन
1: और...
0: की शुभकामनाएं देते हैं अपने पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन
1: और
0: की
1: साथ ही इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त मीता और रेणु को भी इजाजत दीजिए। आप इस गीत को सुनते रहिए, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार, जोहार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये गीत भारतीय सेना को समर्पित।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ஜெர்மனி கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: कार्यक्रम का गाना शुरुआत करते हैं फिल्म मुस्कान से. आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है. इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है निखिल विनय ने. सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जदुका किशनपुर से आलम दिलकश, शमाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, सीसीएल बड़का काना से रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना बाबू, आरके अकेला. आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मुस्कान से ये गाना.

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल पीएनजी।
1: कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम हाजीपुर से नीतू सिंह, राकेश सिंह, डॉली सिंह और परिवार के सभी सदस्य, सासाराम से ममता पांडे, माघवेंद्र कुमार, रेणु मलिक, नूतन राय, निभा सिंह, मंजू बाला, शंकर, सुप्रिया पाठक और ग्राम ताऊ बुंडू से अजय मुंडा, विजय मुंडा, राहुल, हीरा, बनेश्वर, छोटू, निखिल, नेहा और निक्की, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म ना तुम जानो ना हम से ये गाना। आवाज उदित नारायण और पमीला जैन की है।

आइए सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना, अभिजीत की आवाज है। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने। गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर से सविता, प्रतीक्षा, चंदन, अलका, राकेश। जमशेदपुर से ही हैं हरविंदर सिंह भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, हरपाल भाटिया, एंजल भाटिया और नवदीप भाटिया। महुलडीहा से हैं नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, इतवारी महतो, बंदनी महतो, दीपक, संतोष, अनु, तनु, राहुल और बिट्टू। तो आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम ओल्ड लिस्नर ग्रुप रांची जोन से हमारे रेडियो दोस्त सच्चिदानंद दुबे, बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज विकास, आशीष और उनके मम्मी पापा, मेन रोड सांकुल से अजय कुमार मिश्र, आनंद नटराज, रामाशीष, राजीव कुमार, देवेंद्र भाई, नीरज विकास, मनीष, आशीष, राजदीप, संजोत, मकबूल और उनके ढेरों साथी। तो आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म त्रिशूल से ये गाना, आवाज लता मंगेशकर और यशुदास की है। साहिल उद्वैनवी ने इस गीत को लिखा, संगीतवत किया खयाम ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी लता और हमारे साथ है हम सब की प्यारी सखी राखी।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। आशा है बहनों आप सब स्वस्थ होंगी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल होंगी और प्रसन्न भी होंगी, क्योंकि हमारा और बहनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि जब हम अपने कार्यक्रम में बहनों से मिलते हैं तो हमारी खुशी उनसे मिलकर दोगुनी हो जाती है।
1: लता तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम यानी कि आज का सुहाना सफर। हाँ। और अपनी बहनों से बातें करते हैं, जानकारियां और मनोरंजन तो हमारे साथ है ही। हाँ, उनको देने के लिए
0: बिल्कुल बहनों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन से सीधे जुड़ा है, वो है पर्यावरण सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी।
1: हाँ भाई, कई बार हम अपने कार्यक्रम में इस संबंध में बात कर चुके हैं और हमेशा करते रहेंगे क्योंकि इसका समाधान हम सबको ही मिलकर ढूंढना है लता। तो जरा सोचिए बहनों, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए और बाकी अगर अच्छी मिट्टी हो तभी उस पे फसल उगेगी जिससे हमारा भोजन होगा, और जमीन के लिए, पेड़ पौधे के लिए, सबके लिए प्रकृति का साथ चाहिए।
0: हाँ रखी, ये बहुत अहम बात तुमने कही क्योंकि ये सिर्फ एक किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबका साथ इसमें जरूरी है। लेकिन बहनों क्या हम प्रकृति को वो सब दे पा रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है? आज बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की

0: कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग, जल स्रोतों का प्रदूषण और कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं होना पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है।
1: सच कह रही हो लता। हाँ। और पर्यावरण हम सभी का है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सभी को लेनी पड़ेगी। हाँ। व्यक्तिगत तौर पे लेनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल राखी, पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ पौधे से ही नहीं है, हमारे चारों ओर मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। इन सभी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारा जीवन इसी पर निर्भर है।
1: सच कह रही हो। शहरों में बढ़ता ट्रैफिक वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है, कूड़ा कचरा खुले में फेंका जा रहा है, प्लास्टिक का जो प्रयोग हो रहा है उससे गंदगी फैल रही है चारों तरफ, जो कि पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है।
0: हाँ बहनों, इसलिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना होगा कि जाने अनजाने में हम न जाने किस तरह से अपने पर्यावरण को उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा सचेत और ध्यान देने की जरूरत है।
1: हम अपने स्तर से भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं बहनों, और करनी हमें ही है। बस जरूरत है कि हम अपनी ओर से थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी परवाह करें और अपनी जिम्मेदारी समझें।
0: हाँ राखी, इसके लिए जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और केवल पेड़ ही ना लगाएं बल्कि पेड़ लगाने के साथ उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी लेनी होगी कि उसकी सही देखभाल हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है।
1: हाँ, और अब बात आई अगर पानी की हम करें तो पानी की जो समस्या है बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे यहाँ। देख ही रही हो हर जगह, जरूरत के अनुसार ही पानी का इस्तेमाल करें, वर्षा जल का संरक्षण करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। जैसा हमने अभी कहा, बाजार जब आप जाएं तो प्लास्टिक की जगह जूट का थैला लेकर जाएं। हाँ, है ना। हाँ। और कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, इससे सब जगह सफाई भी होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। पर्यावरण संरक्षण का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये भी है। और बिजली की बात भी अगर हम करें तो बिजली की बचत भी हमें करनी होगी बहनों।
0: हाँ बिल्कुल राखी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कदम जो है ना, वही हम अगर बढ़ाए ना तो हम अपने पर्यावरण को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। बहनों, पर्यावरण से जो हमारी जो जरूरतें पूरी हो रही है, पर्यावरण को बचाने की आदत जो है वो हमें बचपन से ही विकसित करना होगा, अपने बच्चों में इसकी नींव डालनी होगी, तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है।
1: बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर न फेंकें, पानी बचाएं, पानी बर्बाद न करें, पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, और जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ गंदगी न फैलाएं, पर्यावरण से, प्रकृति से प्यार करें।
0: हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने कही कि हमें प्रकृति से प्रेम करना आना चाहिए, और बच्चों में अगर बचपन से ये नींव हम बो देना तो वाकई हमारी प्रकृति और प्रेम हम सब के संग चलेगा। तो उन्हें सिखाए कि पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक दिन का अभियान ना हो बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली का।
1: और लता, वैसे भी हमारा झारखंड बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़, झरने, नदियाँ, कितना सुंदर है ना। तो हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए ताकि इन पहाड़ों के, पर्वतों की सुंदरता बनी रहे।
0: हाँ।

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल्स पीएनजी।
1: तो मेरा एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको ले चलते हैं अपनी अपराजिता की ओर, जिसे आपको एक संघर्षशील कहानी पेश करेंगी, सुनाएंगी आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा। और बहनों, आज हम अपराजिता लेकर आए हैं आपके लिए और अपराजिता में आज आपको महिला संघर्ष की कहानी सुनाएंगी आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा।
2: बहनों, अपराजिता केवल वह स्त्री नहीं जो हारती नहीं, बल्कि हर हार, हर पीड़ा और हर बाधा के बाद स्वयं को समेट कर फिर खड़ी हो जाती है। वह परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से अपनी पहचान बनाती है। बहनों, पंख भले ही कट गए हों, लेकिन उड़ने का हौसला जीवित होता है। आज अपराजिता में मैं आपको एक ऐसी ही सशक्त स्त्री की कहानी सुनाऊंगी, जिन्हें नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण कहा जा सकता है, और मैं ऐसे ही देखती हूं उन्हें, और उनके आसपास रहने वाले सभी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जी हाँ, आप हैं प्रोफेसर कामिनी। बचपन प्यार दुलार में बीता, पिता शिक्षक थे, हमेशा उन्होंने कामिनी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शिक्षा की शक्ति ज्ञान के बल की बातें समझाया करते थे वो। हर बेटी को पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, समाज में अपनी एक सशक्त पहचान बनाकर सिर उठाकर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल बहनों, चूंकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ हमें सशक्त होना ही नहीं सिखाता, बल्कि इसके पीछे कई संघर्ष, कई चुनौतियां होती हैं।
2: हाँ, तो युवती कामिनी ने भी अपने सुखद भविष्य की योजनाएं बनाई थी, कभी जैसी हरियोती बनाती है, उन्होंने भी सपने संजोए थे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार कहाँ चलता है। एक दुर्घटना ने जीवन की रफ्तार जैसे रोक दी अचानक। हाँ, उस दुर्घटना ने दौड़ती भागती कामिनी को व्हील चेयर पर लाकर रख दिया। बदहवास सी वह हंसमुख लड़की समझ भी नहीं पाई कि आखिर ये हो क्या गया उसके साथ और कैसे बढ़ेगा आगे जीवन। परिस्थितियां कठिन थी, पर माता पिता ने कभी उसे टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे कामिनी ने अपनी खोई हुई हिम्मत वापस लौटाई। हर दिन स्वयं को समझाया कि हर हाल में उसे अपने सपनों को पूरा करना है।
1: हाँ, और सपनों की उड़ान भरने के लिए तो बस हौसला चाहिए।
2: हाँ, जीवन में हर कदम पर मुश्किलें आती रहीं। विश्वविद्यालय जाने के लिए हर दिन पापा को साथ जाना पड़ता था। पूरे दिन बैठकर इंतजार करते रहते थे, फिर उसे वापस लेकर घर आते थे। कुछ लोगों की उपेक्षा और अवहेलना भरी उचटती से दृष्टि तो कुछ दया का पात्र समझकर मदद करने को आते थे कामिनी की। ये दोनों ही परिस्थितियां कामिनी के लिए असहनीय थी। बहनों, बहुत रोती थी वो घर आकर, पर फिर खुद से खुद को समेट कर खड़ी भी हो जाती थी। विधिक में पीएचडी की उपाधि जब मिली उसे, तो पिता की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। माँ खुशी से कभी भोलेनाथ के मंदिर तो कभी माता रानी के दरबार में माथा टेक रही थी। और फिर एक दिन वो समय भी आया जो कामिनी के लिए बहुत ही सुनहरा समय था और उसके पूरे जीवन की तपस्या का फल था। हाँ, कुलपति महोदया का फोन आया। डॉक्टर कामिनी, हमें आपकी प्रतिभा और लगन पर गर्व है, क्या आप अपने ही विश्वविद्यालय में सेवा देंगी? अरे, आश्चर्य और खुशी से कामिनी के शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वर्षों बीत गए, अब वो प्रोफेसर कामिनी है। डॉक्टर कामिनी बच्चों को संबोधित कर रही हैं आज मंच से, हाँ, दीक्षांत समारोह है विश्वविद्यालय का। वो कहती हैं, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। वो अपने व्हील चेयर को बड़े प्यार से सहलाकर बुदबुदाती हैं, धन्यवाद आपका, बहुत साथ निभाया आपने मेरा।

0: बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और लता।
1: और राखी, मैं आशा करती हूँ कि बहनों को ये गीत बहुत ही खूबसूरत लगा होगा।
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि गीत जो है ना राखी, वो हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और प्रेरणा भरने का काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम बहनों को गीत सुनाते हैं ना, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनें जो है ना, उसे अपने जीवन में आने वाले पलों के साथ जोड़ करके उत्साह उमंग से सुनती होंगी, है ना। और अब बातें जो होगी वो, जैसा कि हम हर दिन बहनों के लिए लेकर के आते हैं जानकारियों का खजाना, तो इस समय जो सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए राखी, वो है बदलते मौसम की। क्योंकि बहनों, बदलते मौसम में मौसम का ये नजारा देखना हमें आनंद तो बहुत देता है, लेकिन इसके साथ तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है।
0: बहनों, मौसम बदल रहा है, लता बता रही है आपको, है ना। और मैं तो देख रही हूँ कि मौसम के साथ साथ लता भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है। कभी साड़ी पहनती है, कभी सूट पहनती है ना। और जब हम सखियों से बात करते हैं तो कुछ हंसी मजाक की बातें होती हैं ना लता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बदलते मौसम को देखकर आनंद हमें बहुत आ रहा है, ये तो सही है। लेकिन लेकिन इस बदलाव में कुछ खास करना भी जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहनों, खास यही करना है कि अपना और अपनों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि ये रिमझिम फुहारे, ये तेज हवा, कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास सिर्फ आनंद ही नहीं देता, बल्कि हमें सावधान रहने की चेतावनी भी दे जाता है।
0: हाँ बहनों, क्योंकि बहनों भाई, अपनों की जो मुस्कान है हमें बेहद प्यारी लगती है, और ये मुस्कान जो है उनकी सेहत से जुड़ी है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हाँ बहनों, बदलते मौसम में सावधानी बरतें, स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वस्थ खान पान अपनाएं और अपने परिवार की सेहत को ही प्राथमिकता दें।
0: और फल सब्जियां जरूर खाएं, लेकिन बहुत देर तक कटे हुए जो फल हैं रखे हुए उन्हें ना खाएं, और बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं खाना है। जो ठेलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने की जो हमें ललचाती हैं, पर हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ अगर हम खाते हैं तो जो गंदगी होती है, मक्खियां हैं, रास्ते की गंदगी है, उनके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जब भी हम कच्चे फल या सब्जियों का सेवन करें ना बहनों, तो पहले उसे अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद ही उसका सेवन करें। और बहनों, जैसा कि राखी ने कहा कि साफ स्वच्छ भोजन ही इस वक्त हमें करना चाहिए इस मौसम में, यह भी ध्यान रखें बहनों कि हमेशा साफ पानी ही पिए और खाना हमेशा ढक करके ही रखें, खुला खाना कतई ना छोड़े, बहुत ज्यादा तला भुना या बासी भोजन करने से बचे। क्योंकि इस मौसम में बासी भोजन, तला भुना, मन तो बहुत करता है कि गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए चाय के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाते हैं।
0: क्योंकि पाचन क्रिया भी हमारी दुरुस्त होनी चाहिए ना, जो कि बरसात में थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा पर्याप्त नींद की आवश्यकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है लता। क्योंकि नींद नहीं होगी तो हमारे जो शरीर की कार्य प्रणाली है पूरी गड़बड़ हो जाएगी। और साथ ही साथ थोड़ा व्यायाम करें, योग करें, ये तो हम हमेशा बहनों को कहते हैं कि इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाए।
1: बिल्कुल बहनों, हम समझ सकते हैं कि बहनों को वक्त नहीं होता इतना व्यायाम करने का, इतना एक्सरसाइज करने का, योग करने का, लेकिन बहने आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त आप अपने 24 घंटे में चुरा लें और इसे अपने लिए जिए, व्यायाम करें, खुश रहें, आपके जो भी शौक के काम है वो करें। तो बहनों देखिएगा ना कि आप कैसे खुद स्वस्थ रहती हैं और पूरे परिवार को स्वस्थ रहती हैं।
0: और फिर आपको यही मौसम जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको सावधानियां बरतनी है, ये मौसम भी आपको कितना जादू भरा और कितना खूबसूरत लगने लगेगा, है ना लता।
1: तो बहनों, अपनों का ख्याल रखने का अर्थ केवल उन्हें भोजन या दवा नहीं देना होता है, बल्कि अपनों के लिए थोड़ा सा समय और ध्यान भी बहुत बड़ी देखभाल बन जाती है। और इस मौसम का फिर जादू जो है हमारे स्वास्थ्य में असर करने लगता है।
0: हाँ।

0: तो लता देखो, बातों बातों में पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया और वक्त हो गया बहनों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, और ये गीत सुन करके ना हमें उस दुनिया में ले जाती है जब वो दौर हुआ करता था, हम फिल्म थिएटर जाकर के जब गाना सुना करते थे, फिल्में देखा करते थे। तो मैं तो कहीं खो गई थी राखी, सच बताऊं, लेकिन तुमने सही कहा, घड़ी जो है स्टूडियो की उसने इशारा किया है कि अब समय हो चला है विदा लेने का बहनों से।
0: चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और लता को दी इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का बस थोड़ी ही देर में।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: फिल्म संगीत का फिल्म संगीत में सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की है। समीर ने इस गीत को लिखा, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं फिल्म सूर्यवंशम से ये गाना। आवाजें अमिताभ बच्चन, सोनू निगम और जसविंदर नारूला की है।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म बालमा से, आवाजें अलका याग्निक और साथियों की है। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत वाद्य किया नवीन श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइची नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leonpo Dien Thungel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our Jammu correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has extended warm birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday. In a message posted on X, PM Rahman extended his warmest birthday wishes to Modi by wishing him good health and high spirits as he continues his dedicated service to the people of India. PM Modi responded by thanking Rahman for his message. The message was shared by the High Commission of India in Bangladesh on its official Facebook page. Earlier, the Prime Minister's office also posted a greeting card featuring PM Modi's photograph on its official Facebook page, wishing the Indian Prime Minister on his birthday. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said that he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily, in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG helicopters to Pawan Hans Limited.

0: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the U.S. next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel, and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakkar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Tur have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहार को देखते हुए रांची के एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। रांची में आज पेडिकॉन 2026 शुरू। देश भर के 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ होंगे शामिल। बच्चों की बीमारियों और आधुनिक उपचार पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को किया नाकाम। हथियार के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और राज्य में आज बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज की विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों के परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई थी। इसके तहत करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। साथ ही अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये विकास हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा।
1: झारखंड में भी पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को पक्का आवास, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना से 42 बिरहोर परिवारों के आवास का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें 16 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। बिरहोर परिवारों के लाभुकों ने बताया कि आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में राशि का भुगतान किया जा रहा है। पक्का मकान बनने से उनकी आवास संबंधी परेशानियां दूर हो गई हैं।
3: पैसा आया 30 आया तो हम उतना आधा चढ़ा दिए, आधा चढ़ा करके फिर एक बार आया 50 में फिर उतना मेंटल कर दिए। अब मैं आ रहा है 1,00,000 रुपया वैसी में अब ढलाई करेंगे हम, एगो किचन है एगो कमरा है, अब खुश है।
4: अभी 30,000 आया, इतना भर में अभी गुजारा चलेगा, रहेंगे टूटल फूटल में, जब आएगा तो बनाएंगे चेक करेंगे दीवार सब मकान होगा तब यही रहेंगे घर में, दिक्कत नहीं हो।
1: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड उड़ीसा में 7 ठिकानों पर ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। ईडी के अनुसार कारोबारी संजय कुमार डालमिया पर बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कथित धोखाधड़ी करने का आरोप है। झारखंड उच्च न्यायालय ने एचईसी क्षेत्र के बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त और एसएसपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक स्वयं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा है। यह निर्देश आगामी त्योहारों को देखते हुए दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने मामले में शपथ पत्र दाखिल किया जबकि प्रार्थियों ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तत्वाधान में आज से 20 सितंबर तक रांची पेडिकॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में बच्चों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों, आधुनिक उपचार और एंटीबायोटिक्स के सही उपयोग पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। साथ ही प्री कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन और क्विज का आयोजन होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को नाकाम करते हुए हथियार के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस को कुछ लोगों के हथियार लेकर निकलने और हत्या की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
5: सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग आर्म्स और एम्युनिशन कैरी कर रहे हैं और मिल्लत नगर क्षेत्र में गोलघर स्कूल वहां पर बैठकर कुछ लोग अनहोनी करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका गठन किया गया सुबह भोर का समय था 1:30 बजे के आसपास। 5 व्यक्ति उस जगह से पकड़े गए और इस तरीके से जुगसलाई पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई।
1: भारतीय शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर और निफ्टी 30 अंक बढ़कर 23,301 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर में टेलको स्टेडियम भुवनेश्वरी मंदिर रोड पर N111 के पास स्कूली बच्चों से भरी एक वैन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में करीब 15 से 17 बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि घायल बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
6: हम लोग की असेंबली चल रही थी तब तक हमें खबर मिली, तो जैसे प्रेयर खत्म हुई तो हमने 5-6 टीचर्स को जल्दी भेजा, तब तक पब्लिक ने बहुत हेल्प, तुरंत तुरंत बच्चों को टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले आए। जब तक हम लोग पहुंचे तो देखे 5-6 बच्चे बहुत पैनिक थे, ठीक ठाक थे, उनको हम स्कूल ले आए, उनके पेरेंट्स को कॉल किया, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लोगों को वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहारों को देखते हुए रांची के एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। रांची में आज से पेडिकॉन 2026 शुरू। देश भर के 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ होंगे शामिल। बच्चों की बीमारियों और आधुनिक उपचार पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को किया नाकाम। हथियार के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और राज्य में आज बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, कलाकार सिप्रा बोस।
1: ही है गारंटी, क्योंकि PNG है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 0654125300 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद BPCL's PNG।

0: अभी आप श्री प्रभु से दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुगम संगीत बस थोड़ी ही देर में
1: है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल पीएनजी।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में चंद गजलें। ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

गुलाम अली के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: rail and road connectivity, and other trade-related matters. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Budhbahadur Gurung. Union Defence Minister Rajnath Singh will grace the handing over ceremony of HAL platforms with the Indian Air Force and Pawan Hans in Bengaluru today. The public sector aviation manufacturer HAL will hand over two LCA FOC trainer aircraft to IAF, four Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. A contract for 16 LCA fighter aircraft and four twin-seaters in FOC configuration was placed in 2010. HAL plans to deliver 29 Mk-1A twin-seater LCA aircraft to the IAF by 2033-34. We have more from our correspondent.
1: The induction of LCA full operational clearance trainer and HTT-40 aircraft and Dhruv next generation helicopter in defense and civilian space will strengthen India's self-reliance in military pilot training in Indian Air Force and training of pilots in the civilian roles. The R&D efforts within the country will create a conducive ecosystem in the defense and civil aviation sector. This will reduce our dependency on imported trainer aircraft and helicopters and save foreign exchange. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: Indian Railways has approved a 493 crore rupee project for the construction of around 38-kilometer new rail line between Mukutban, Adilabad and Garchandur in South Central Railway. The Railways Ministry today said the new rail line will provide a shorter and more efficient rail route, reducing travel distance, transportation time and associated costs. It will also provide an alternative route to decongest the existing Wardha-Manikgarh section, supporting smoother movement of freight traffic. Indian Railways has approved the doubling of the Chowk-Karjat railway section in Maharashtra at a cost of 497 crore rupees. This step has been taken to enhance railway capacity and improve train operations in Maharashtra. The Railways Ministry said the Chowk-Karjat section forms part of the Panvel-Chowk-Karjat route, which is an important corridor for both passenger and freight movement. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. In this special series of the Seva Sankalp campaign, today we examine the social and health-related changes taking place on the ground through the Swachh Bharat mission.
2: Launched under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the campaign has transformed cleanliness into a people's movement from remote villages to urban areas across Jharkhand. More than 91% of the villages in the state have been declared ODF+, where focused efforts are now underway on solid and liquid waste management. Calling upon every citizen to make cleanliness a part of their habits and values, Prime Minister Narendra Modi has said that cleanliness is not merely a program, it should become a part of our lives.
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है. स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है. देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए. भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया. सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए. सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग-अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए.
2: Inspired by the Prime Minister's vision, the construction of nearly 42 lakh Izzat Ghar or household toilets in rural areas of Jharkhand has helped ensure dignity and safety for women. At the same time, in the remote tribal areas of the state, initiatives under the Gobardhan scheme to convert waste into wealth and produce biogas are contributing to strengthening the rural economy. Rural women in Ranchi who have directly benefited from the Swachh Bharat mission shared their happiness impressed over the significant change brought about in their area.
4: Mera naam Nirupama Tigga hai. Main Nagri Prakhand.
5: I am a resident of Saparam village in Nagri block. The toilets provided in our village under the Swachh Bharat mission have proved to be very beneficial. I would like to express my heartfelt gratitude for this initiative. Around 540 toilets have been constructed in the Saparam village under our Saparam panchayat.
4: Uske liye bahut bahut dhanyawad deti hu.
2: Under the Swachhata Hi Seva campaign, towards cleanliness has not only improved people's health and quality of life, but has also strengthened the foundation of Viksit Bharat 2047 by translating the resolve of prosperity through cleanliness into reality. With Karmveer, Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: This is Akashwani giving you the news.
6: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back to the Midday News. Northern Army Commander Lieutenant General Prateek Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Prateek Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. The successful operation led to elimination of two Jaish terrorists and arrest of one OGW, besides recovery of arms and ammunition. As the Election Commission has temporarily frozen the name and symbol of the All India Trinamool Congress, the Mamata Banerjee camp and the Ritabrata Banerjee camp have both submitted proposals to the Commission ahead of the forthcoming by-elections. The Ritabrata camp has proposed three alternative names and symbols. The proposed names are Nationalist Trinamool Congress, Democratic Trinamool Congress and West Bengal Trinamool Congress. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. On his arrival, General Dhiraj Seth received a ceremonial guard of honor. Later, he paid homage at the tomb of the unknown soldier in Moscow. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense, including Vasily Sergeyevich Osmakov, Deputy Minister of Defense. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% from its earlier projection of 6% for the current financial year. The agency said the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. Moody's said India's real GDP growth rose to 8.2% year-on-year in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses and rural communities and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin Dy in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Garchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
8: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
7: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
7: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
7: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
10: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
7: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
11: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
2: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
7: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
7: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
13: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गाना। आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की है। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा, इस गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: इसी के साथ जय भारती कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी रांची है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के मामले में राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर अपने निर्णय को उचित ठहराया है। सरकार का तर्क है कि व्यापक गड़बड़ियों के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी। अधिवक्ता प्रेरणा झुनझुनवाला के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी फैसले पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए जांच निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
2: स्टेट ने सुबह सुबह अपना जवाब दाखिल किया है और उसी के वजह से कोर्ट ने अब नेक्स्ट डेट दिया है 7 अक्टूबर का सुबह 11:30 बजे। और कोर्ट ने ये बात बोली है कि वो सारे पक्षों को सुनेगी बिफोर इट पासेज एनी फाइनल ऑर्डर। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था अर्लियर वो कंटिन्यू करेगा। इन द मीन टाइम सब जैसे काम कर रहे थे, पर्सुएंट टू द अपॉइंटमेंट्स विल कंटिन्यू टू वर्क।
1: इस बीच भाजपा ने राज्य सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों को शांत करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की थीं। सरायकेला खरसावां जिले के चर्चित 35 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के तहत कारोबारी संजय डालमिया के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी की टीम वित्तीय लेन देन और संपत्तियों के दस्तावेजों की सघन पड़ताल कर रही है। राज्य मंत्रिपरिषद की 25 सितंबर को अहम बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के सभी जिलों में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रंजन सिंह फौजी ने रामगढ़ में अपने आवास पर दीप जलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन और आत्मनिर्भर भारत जैसी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: हम लोग पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ झारखंड प्रदेश के संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने सभी से आह्वान किया कि आज मोदी जी का जन्म खुशियों का है। उन्होंने देश के गरीबों का जीवन का उत्थान करने का काम किया और रक्षा के क्षेत्र में वन रैंक वन पेंशन को उन्होंने जो दिया उससे हम लोग पूर्व सैनिकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। हम लोग सभी अपने अपने घरों में दीप जला के उनकी खुशी मना रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के बरियातू रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले ही हैदराबाद से विशेष इलाज कराकर रांची लौटी रूपी सोरेन को कल देर शाम अचानक सांस लेने में गंभीर तकलीफ हुई। डॉक्टरों की एक विशेष टीम अस्पताल में उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रख रही है। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में आईआईएम रांची को बड़ी वैश्विक पहचान मिली है। संस्थान ने क्यूएस बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2027 में शानदार जगह बनाई है। मास्टर्स इन मैनेजमेंट श्रेणी में आईआईएम रांची को एशिया में 21वां जबकि बिजनेस एनालिटिक्स में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग रोजगार क्षमता, पूर्व छात्रों की सफलता और अनुसंधान प्रभाव के आधार पर जारी की गई है। चतरा हजारीबाग कोडरमा मुख्य मार्ग पर हेरू नदी का नया पुल 12 वर्षों के बाद भी अधूरा है। अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण राहगीर 200 साल पुराने जर्जर पुल से चलने को मजबूर हैं। कार्यपालक अभियंता राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि ठेका कंपनी द्वारा काम छोड़ने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भेजी गई है और प्रक्रिया के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। चतरा जिले में भदई मक्का और उड़द फसल के कटनी प्रयोग का सर्वेक्षण इस बार डिजिटल तरीके से किया जाएगा। जिला सांख्यिकी विभाग केंद्र सरकार के DGCES मोबाइल ऐप के माध्यम से अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया पूरी करेगा। इस वर्ष जिले में 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मक्के और उड़द की खेती की गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव किंगटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गांव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहाँ से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी

0: को थामे रहीं। उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला। पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है। और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
2: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
3: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
2: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
1: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया, वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने धाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हां, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: अरे महाराज,
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी न कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।
0: उन्नीसवीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
5: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।

0: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
1: पानी ले आ रहा है?
2: तो फिर भी करा गया। क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: न कमाता है न धमाता है, ऊपर से दूर जमाता है
2: दीदी।
0: अरे इनको तो
2: दीदी।
3: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
2: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
0: अरे
2: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
0: हाँ हाँ,
2: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
3: अब फिर क्या?
2: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
3: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
4: जी दीदी।
3: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
4: बिल्कुल चलेंगे।
3: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
4: जी दीदी।
5: जी दीदी,
4: हम सब तैयार हैं।
6: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
6: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
6: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
0: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
6: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थी।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी।
2: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप-चुप सी लग रही हो।
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
2: सोच रही थी? क्या?
3: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
2: बिल्कुल।
3: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
2: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
3: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
2: हाँ।
3: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
3: आपको नहीं लगता?
2: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
2: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
3: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
2: बिल्कुल।
3: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
2: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

आखिर क्या था। यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों

0: की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी
2: इज्जत जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स,
4: ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थी, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किस

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योति ग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जन सेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
5: जी।
3: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
4: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो

0: 2014 में प्रधानमंत्री बने, इसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था। उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले

0: सीता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो हर एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है, और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें, आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना ने जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे, उसके वो कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गाँव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है, उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांवों में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर 2 सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने

0: क्या किया ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना
0: जी
1: के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा, बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो। कैसे देखते हैं, चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
3: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक द्योतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के डीएनए में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोड़ दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोड़ दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था, तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
0: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप किट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उस

0: की जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है। और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। दो तीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांट एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए हैं उनके लिए काफी कुछ। एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
2: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
3: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति की अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव-गांव में जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को बेटियों को स्कूल जरूर भेजें, और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने मिठाई बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
0: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव-गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए लेकिन ये उपक्रम था उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखा ग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
3: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। कंपियर राजदा हुसैन और शगुप्त तवानो। प्रस्तुति प्रभु शरण की।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, कंपेयर थे राजदा हुसैन और हिदायतुल्ला, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बताते चलें। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम। 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चाएं होंगी इंटरनेशनल इक्वल पे डे और हर काम को उसके हिसाब से दें बराबर महत्व विषयों पर। कंपेयर हैं प्रीति और तनिष्का, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग। इसके अंतर्गत चर्चाएं होंगी कुटीर उद्योग का महत्व, बरसात में होने वाली बीमारियों से बचें श्रमिक और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अलावा श्रमिकों के अधिकार विषय पर भी आप सुनेंगे चर्चा। कंपेयर हैं कुमारी आरती और रंजना तिवारी, प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बारी कार्यक्रम। चर्चा होगी आधुनिक खेती को अपनाएं। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे जैविक एवं रासायनिक खाद पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजित सिंह, भेंटकर्ता अनीता तिर्की, सूत्रधार अरविंद मिश्रा और रिंकी पांडे। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। छह बजकर दो मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। इसके अंतर्गत चर्चा आप सुनेंगे आज का युवा कल का भविष्य। नागपुरी वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे शिक्षित परिवार राष्ट्र। वार्ताकार होंगी सविता केशरी। संकलन एवं प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर कार्यक्रम होगा हो भाषा में आदिवासी अखड़ा। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।

नौजवान फिल्म का ये गीत था एसडी बर्मन के संगीत पर। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और आवाज थी लता मंगेशकर की।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, मदन मोहन का संगीत चिराग फिल्म, और आवाज थी लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं सांझ सरगम, हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल पीएनजी।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त

0: 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सांझ सरगम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हकीकत फिल्म से, संगीत है मदन मोहन का और इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने। आवाज आप सुनेंगे लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और मजरूह सुल्तानपुरी के थे बोल। आइए अब अगला गीत सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। चतरा में स्थित आम्रपाली ओपन कोल माइंस की सुरक्षा कल से आधिकारिक तौर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संभाल लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खदान से बड़े पैमाने पर हो रहे कोयले के अवैध कारोबार और चोरी पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा की गई। यह विशेष प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर 2026 में रांची विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। पाकुड़ की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में मुख्य अभियुक्त जौहर आलम को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खूंटी जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां साइको थाना क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गाड़ियां बेचने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के मास्टरमाइंड

गुरुदयाल मुंडा समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर में आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया तथा लंबित मामलों पर कड़े निर्देश जारी किए गए। और आत्महत्या रोकथाम सप्ताह के अवसर पर बोकारो के चास स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के बीच एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। संध्या 5:30 पर समय होगा पॉडकास्ट सीरीज का प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर समय होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कर्टेन रेजर बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:30 पर समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर सम्पन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव चिंता उदासी मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697 टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345 4060 पर।
3: समय पर मदद लें स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में ये गीत। फिल्म है पड़ोसन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में फिल्म पड़ोसन का ये गीत। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में, जिसकी वो प्रिंसिपल है, वहाँ पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
3: धन्यवाद
2: मंजरी जी। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
3: हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं।
2: सीख सकते हैं, और प्रकृति हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस दिशा में आपने कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
3: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज करते
2: हैं। वेट वेस्ट जब आप कह रही हैं, तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेट वेस्ट में आती हैं?
3: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
2: सो जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
3: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है।
2: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं, जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
3: एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे। तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
2: एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और एक और जो पहलू है पानी का, उसके प्रति किस तरह से आपने उसमें कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए?
3: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें, इवन जो वेस्ट वाटर होता है जैसे जो टैप से आ रहा है उसको हमारी कोशिश रहती है कि उस इसको यूज करें, हम रीयूज करें फ्लावर बेड्स के लिए। और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर को, और जब जरूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज कर लेते हैं वाटरिंग के लिए।
2: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने काफी कार्य किया है।
3: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में, और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं।
2: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है, तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं?
3: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है।
2: आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे, उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है, और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
3: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरमेंट में कई ईयर्स तक कैसे ही रहता है। तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर सकें।
2: तो ये रिसाइकल की जो आप बात कर रही हैं, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक, जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
3: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था। तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों, किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं, तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी, तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई। और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें। इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और इनको हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहां पर डोनेट कर रहे हैं, और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है, तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है।
2: अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके,
3: अपसाइकल में ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं, वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है।
2: आप कह रहे हैं कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना, क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है?
3: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट है ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को गाइड किया, इन्वॉल्व किया, तो वो समझने लगे।
2: तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमने पंचायत मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने प्रोजेक्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ, वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है विप्रो अर्दियन की तरफ से। और ये जो प्रोजेक्ट किया तो इसमें हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया। okay. और दोनों ही सालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने देखा बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई, वो छोटी छोटी टर्म समझने लगे और वो इम्पोर्टेंस समझने लगे कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी है।
2: तो आपको राजकीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया।
3: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है। और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें ये अवार्ड दिया। और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था, वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था। तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है और ये सम्मान मिला है जो हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज की हैं स्कूल में उसके लिए।
2: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं?
3: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।
2: जी, सो आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करी, तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहें कि एक छोटे लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है?
3: जी बिल्कुल, खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन है और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं। मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा, फिर कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं, खुश होते हैं। और
2: जी बिल्कुल, एक

0: इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का, सभी का, जो भी लिविंग बींग है, वो है खाना। खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध है, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है, पुराने जो मोटे अनाज थे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट, जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है?
1: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन, तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है।
0: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी, उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
1: बैग फ्री डेज होते हैं, ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं, हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं, और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं।
0: अच्छा, बिना किताबों के
1: आते हैं, और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए। तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के।
0: जी,
1: क्योंकि नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता। कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है, कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं, तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है। तो ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं।
0: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स, किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या कोई प्रदर्शनी आते हैं या कोई एक्टिविटीज?
1: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं, जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स, तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में। और मेरे एरिया में ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं, तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे, रूम्स बनाते थे, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है, तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ, वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं, जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग, तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है।
0: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों के लिए बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो, तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है या आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकते?
1: बिल्कुल करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
0: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो, जो भी आपके खास आप कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम, उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो, कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हो?
1: बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज लेते हैं, तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज किसी ने टॉफी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
0: सो मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से? और कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत है?
1: जी बिल्कुल जरूरी है, और खासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे, वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें।
0: जो एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
1: हमारे पास 6 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
0: सो आपको लगता है कि अब

0: आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
1: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6 में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में सीखते हैं, तो फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
0: पंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सकें, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, ये जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
1: स्कूल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
0: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
1: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा।
0: कोलैबोरेटिव
1: अप्रोच रहनी चाहिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए।
0: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है उसका प्रमुख पहलू?
1: जी, हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूँ और बच्चों को एनवायरमेंट कॉन्शियस बना सकूँ।
0: सो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं, वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
1: वो एक्टिविटीज यही हैं कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
0: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो है वो करते हैं आपके,
1: वो करते हैं बिल्कुल
0: गाइडेंस में,
1: बिल्कुल करते हैं।
0: सो मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर, और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहे, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: जी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी लेंगे चर्चा के संदर्भ में प्रधानमंत्री वन धन योजना

विषय पर। मनोरंजन करेंगे हो लोकगीत से और भेंट वार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे पशुपालन में रोजगार की असीम संभावनाएं, देखभाल एवं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में। और पुनः हम कार्यक्रम के अंत में मनोरंजन करेंगे संथाली लोकगीत से। श्रोताओं, हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। कई क्षेत्रों में कई समुदाय विभिन्न कार्यों में करने वाले नागरिक निवासी रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी जीवन शैली है। मैदानी इलाकों में कृषि पशुपालन जैसे गतिविधियां चलाई जाती हैं जीवन यापन के लिए, परंतु जो जंगल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां कृषि योग्य जमीनें कम होती हैं, और ऐसी जगहों पर उन नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हों और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें भी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है। यूं तो श्रोताओं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, परंतु झारखंड या अन्य राज्यों की जो पठारी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां आदिवासी लोग रहते हैं, उन पहाड़ों में जंगलों में, और उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत सारे संसाधन नहीं होते हैं, केवल जंगल के आसपास जंगल से जो वनोपज मिलता है इन्हें ही पर आश्रित होते हैं। इसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वन धन योजना को लागू किया है, जो खास करके आदिवासी समुदायों और वनोपज संग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें उद्यमी बनाना इस योजना का लक्ष्य है। श्रोताओं, इस योजना के माध्यम से खासकर लघु वनोपज, झारखंड जैसे पठारी क्षेत्रों में कई लघु उपज हैं, इनकी बिक्री से उतनी आय नहीं मिल सकती है जितनी इनके प्रोसेसिंग से और पैकेजिंग से उन्हें मिलेगी और ब्रांडिंग से भी मिलेगी। और केंद्र सरकार इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन कर रही है। इन लघु वनोपजों की बिक्री के लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है, जहां प्राथमिक प्रसंस्करण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के माध्यम से। श्रोताओं, लघु वनोपज के संदर्भ में बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं, प्रसंस्करण इकाइयों की भी जरूरत होती है, परंतु जंगल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं इससे अनभिज्ञ हैं। इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना के तहत कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि इनके प्रसंस्करण के संदर्भ में जाने और बिक्री कैसे करें, इसके लिए इस योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। वन क्षेत्र में रहने वालों की कठिनाइयां, साधारण शब्दों में कहें श्रोताओं, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, खासकर वित्तीय सहायता, तो इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना के तहत 100% केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है, जिसमें प्रत्येक 300 सदस्यों वाले क्लस्टर के लिए

0: से हो इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए ताकि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सके, बेरोजगारी से हम मुक्ति दिला सकें गांव को, ताकि हमारे युवा दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश में ना जाएं, अपने गांव में ही स्वरोजगार के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी लेते हैं पशुपालन के संबंध में।
1: पशुपालन का महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल आबादी का लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। आंकड़ों को देखें तो 1-2% वृद्धि कृषि के क्षेत्र में हो रही, जबकि 4-5% वृद्धि पशुपालन के क्षेत्र में हो रहा है। राष्ट्रीय आय का लगभग 10% हिस्सा पशुधन से आता है। इस प्रकार देखें किसान भाइयों, तो पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, परंतु इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम। पशुपालन से लाभ एवं उनका समुचित देखभाल एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आर आर गोंगले तांतनगर से, प्रेमलाल कलुंडिया तांतनगर, दिलाय सिंह को मंजारी से, चंद्रशेखर तामसोए कुमारडोंगी से और कुशल चंद्र मुर्मू काटभारी तांतनगर से। आप सबों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। पहले हम आप डॉक्टर आर आर गोंगले जी से हम जानना चाहेंगे कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था या आबादी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खास करके इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।
2: ये झारखंड की, हमारे झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकती है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। अतः खेती पर पूरी तरह निर्भर रहना किसानों के लिए कभी भी लाभप्रद नहीं होता है। ऐसे इसमें खेती के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा गो पालन, इस व्यवसाय को अपनाना बहुत जरूरी है। खेती यहाँ पर उतना, जिस वर्ष बारिश अच्छी होती है उसी वर्ष खेती का उत्पादन ले सकते हैं, अन्यथा खेती के ऊपर निर्भर रहना मुश्किल।
1: इसके साथ साथ कई चुनौतियां हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी वर्तमान समय में कई लोग पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन के रूप में बकरी हो या सुअर हो या भैंस हो, सारे के सारे मांस एवं दूध के लिए कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे उपस्थित हुए हमारे किसानों के साथ।
3: पशुपालकों को किस व्यवसाय से जोड़ना चाहिए?
2: इस क्षेत्र के किसानों के लिए बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय रहेगा, साथ में सुअर पालन, मुर्गी पालन, इस व्यवसाय को यहाँ का किसान अपनाकर अपनी उपजीविका चला सकता है।
4: पशुपालन किस व्यवसाय से जुड़ना चाहिए?
2: पशुपालकों, यहाँ के पशुपालकों को सुअर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन, इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे व्यवसाय है, ये खेती के साथ साथ किए जा सकते हैं। इस व्यवसाय के चलते आपके खेती पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप खेती का भी व्यवसाय कर सकते हैं, साथ साथ में बकरी पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन, ये व्यवसाय को भी आप साथ साथ में चला सकते हैं।
5: सर, सरकार के द्वारा पशुपालकों के हित में पशुपालन विभाग की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है?
2: जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे। झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा यहाँ पर मुर्गी पालन की योजनाएं चलाई जा रही है, सुअर पालन की योजनाएं भी है, बकरा विकास योजना भी। सुअर विकास योजना तरह की है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, एक बृहद सुअर विकास योजना, ये 3 लाख की योजना होती है। इसमें 50% अंशदान लाभुक का होता है और 50% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी योजना है सुकर की लघु इकाई योजना, लघु सुकर विकास, ये 28,000 की होती है, इसमें 4 सुअर मादा और 2 नर्स हुआ, ये 28,000 की योजना है, इसमें 14,000 रुपया मतलब 50% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।

0: 50% मतलब 14,000 लाभुक को अपना अंशदान लगाने का होता है। लाभुक का जो अंशदान होता है वो लाभुक स्वयं लगा सकता है या उसके लिए बैंक से ऋण की भी सुविधा उपलब्ध होती है। कुक्कुट की भी योजना है, ये 1,000 ब्रॉयलर की योजना होती और यह योजना की कुल लागत है 432,500 रुपया। इसमें सरकार का अनुदान होता है 50%, मतलब 216,250 रुपये, और लाभुक का अंशदान होता है 50%, मतलब 216,250 रुपया ये लाभुक का लगाना। ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक के लिए 216,250 रुपया बहुत ज्यादा रकम होती है और लाभुक अपने से लगा नहीं पाता है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी बैंक के द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। हम लोग अनुशंसा करते हैं
1: जी।
0: किसान यदि केसीसी ऋण या किसी अन्य ऋण से यदि बैंक से उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो
1: जी,
0: तो बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तीसरी है बकरा विकास योजना। बकरा विकास योजना ये 1,00,000 की योजना होती है, इसमें 20 बकरी और 2 बकरा। इसमें भी 50% अनुदान सरकार के तरफ से होता है और 50% अंशदान लाभुक को लगाना होता है, मतलब 50,000 रुपया लाभुक लगाएगा और 50,000 रुपया सरकार देगा। इसके लिए भी यदि आप ऋण लेना चाहे तो आपके लिए बैंक से हम लोग अनुशंसा कराते हैं
1: जी।
0: एक है महिला स्वावलंबन योजना
1: जी,
0: जो एकदम असहाय महिला होती है, विशेषकर विधवा महिला या बुजुर्ग महिलाएं, इनके लिए महिला स्वावलंबन योजना करके एक योजना सरकार विभाग द्वारा चलाई जाती है। ये 100% अनुदान पर है
1: जी।
0: इसमें 4 बकरी और 2 बकरा ऐसे दिया जाता है। इस वर्ष की इस योजना को नक्सल प्रभावित क्षेत्र का जो फोकस एरिया होता है
1: जी,
0: ये मुख्य सचिव के द्वारा निर्धारित किया गया है। फोकस एरिया क्षेत्र नक्सल ग्रस्त एरिया में उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए इस साल का रिजर्व किया गया है। ऐसे ये पूरे जिला स्तर जिला आधार चलती है, लेकिन इस वर्ष सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए महिला स्वावलंबन योजना को चलाया जा रहा है।
2: सिर्फ बकरे में कि और वे मतलब जैसे सुअर वगैरह उसके बाद ये मुर्गी वगैरह सब इसमें?
0: हाँ, इस वर्ष की करीब करीब सभी योजनाएं नक्सल ग्रस्त क्षेत्र के फोकस एरिया के लिए चयनित की गई है। ये राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है।
2: अच्छा।
0: और इसलिए इस साल के सभी योजनाएं करीब करीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है।
3: सर ये बताइए कि नवजात शिशु के सुअर के बच्चे इम्तिपाल के लिए कैसे कर सकते हैं नवजात?
0: हाँ, यदि आप सुअर पालन करते हैं तो आप देखे होंगे देहात में बहुत सारे सुअर के बच्चे माँ के शरीर के नीचे दबकर मर जाते हैं, आप देखे होंगे। तो आप लोगों को उसकी जो आवासीय व्यवस्था है वो आवासीय व्यवस्था की जानकारी के अभाव में इस तरह का होता है। बस बनाते हैं सुअर का, उसके लिए गार्ड रेल बनाई जाती है, जो बच्चा दी हुई सुअर ही रहती है उसके लिए गार्ड रेल बनाया जाता है ताकि वो गार्ड रेल के अंदर बैठ जाए और बाहर से बच्चे सुरक्षित रूप से दूध वगैरह पी सके, ऐसे इसमें बच्चे वगैरह मर। दूसरी एक बात को ध्यान रखना है कि जब आप वैज्ञानिक पद्धति से सुअर पालन करते हैं तो जो घर होता है वो सीमेंटेड होता है नीचे का फर, तो सुअर एक ऐसा जानवर है कि वो जमीन में मुंह बाहर में आप पालते हैं तो जमीन में मुंह वगैरह लगाता है तो उसको आयरन मिल जाता है, जबकि आप वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं तो छोटा बच्चा लोगों को जमीन में तो मुंह लगा नहीं सकता क्योंकि फर्श है, ऐसे में उनको आयरन की बहुत कमी होती है और आयरन की कमी होने के चलते सुअर के बच्चों को पिगलेट एनीमिया करके एक बीमारी होती है आयरन की कमी के चलते। तो वो आयरन की कमी को दूर करने के लिए जैसे बच्चा पैदा होते है 2-3 दिन के अंदर उनको आयरन का इंजेक्शन फेरिटस नाम के इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन लगाने से बच्चे मरते नहीं है और उनको पेगलेट एनीमिया नाम की बीमारी भी नहीं होती है। तो एक दक्षता लेना चाहिए और दूसरा वो गार्ड रेल जो होती है, गार्ड रेल रहने से वो बच्चे कभी माँ के शरीर के नीचे दबकर मरते नहीं, ये एक दक्षता लेनी है। और एक तीसरी दक्षता है, बच्चे 8-10 दिन के होते हैं उनमें हाथी के सूंड जैसे 2 दांत होते हैं अंदर में, छोटे छोटे दांत आप देखे होंगे हाँ? उन दांतों को काटना बहुत जरूरी रहता है, आप नेल कटर लेकर वो दांतों को काटना चाहिए, अन्यथा बड़े होने के बाद आपको दांतों से बहुत तकलीफ हो सकती है, दूसरे सुअर नेल कटर से काटना बहुत जरूरी होता है।
2: छोटा में निकले रहते हैं
0: उसको, हाँ वो 7-8 दिन के रहते हैं बच्चे, उसी समय नेल कटर से वो दांत को काटना चाहिए। ऊपर में होते देखिए आप, दो दांत निकलते हैं, वो दांत को नेल कटर से काटना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा फिर वो बड़ा होने के बाद दूसरे सुअरों को तकलीफ देते हैं वो दांत के चलते।
2: पशुपालकों की योजना का लाभ ले तो पशुपालकों को किससे संपर्क करना
0: पड़े? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, यहाँ योजना बनाओ अभियान चला है हर प्रखंड में, उस योजना बनाओ अभियान में पहले आपका नाम की एंट्री करना बहुत जरूरी है। यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाओ अभियान में आपका नाम सम्मिलित कराना जरूरी है। आप संबंधित पंचायत सेवक से पहले अपना नाम सम्मिलित करा लीजिए, उसके बाद योजना का यदि विभाग से लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी संपर्क करके आप आवेदन ले सकते हैं, या जिला स्तर पर आप आना चाहे तो जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से भी आप आवेदन प्राप्त करके। इसके लिए हम लोग सभी वर्तमान पत्रों में इसकी सूचनाएं देते हैं, जैसे वर्तमान पत्र में सूचनाएं आती है आप आवेदन जमा करेंगे, इसकी प्रक्रिया होती है, आवेदन जमा होने के बाद हम उसको जिला परिषद में स्वीकृति के लिए भेजते हैं, जिला परिषद से जब स्वीकृति हो जाती है तो उपायुक्त महोदय से अनुशंसा कराकर फिर लाभुक को हम योजना का लाभ देते हैं।
1: जी सर, सुअर की कौन सी प्रजाति अपनाने से किसानों को ज्यादा लाभ है?
0: जी जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल आपने पूछा। आप देखे होंगे आदिवासी भाई लोग काले रंग के सुअर का मांस ज्यादा पसंद करते हैं, और हम लोगों का जो देसी सुअर है ये भी काला रंग का होता है, लेकिन इसमें खामियां ये होती है कि ये 3-4 बच्चे से पैदा करता है। तो एक नई प्रजाति तैयार की गई है रांची के वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टर कान सिंह करके एक पशु वैज्ञानिक है, इन्होंने एक TND नस्ल की प्रजाति तैयार की है। TND मतलब टी से टॉमवर्थ, जो इंग्लैंड की प्रजाति है, और डीक्स का मतलब देसी, ये दोनों का मिलन करके एक TND नस्ल की प्रजाति तैयार की गई है, क्रॉस किया गया। ये प्रजाति की विशेषता ये है कि इसमें वजन 250 किलो तक वजन भी आ जाता है सुअर का, और एक बिहान में 13 बच्चे भी देता है। तो इस क्षेत्र के लिए TND प्रजाति उत्कृष्ट मानी जाती है। एक तो इसका रंग काला होने के कारण आदिवासी भाई लोग इसके मांस को पसंद करते हैं, और प्रजनन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, एक बिहान में 13 बच्चे भी देती है और वर्ष में 3 बच्चे देती है, मतलब एक सुकरे से आप वर्ष में कम से कम 39-40 बच्चे ले सकते हैं। तो ये नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है क्षेत्र।
1: सर, ये आपको कहाँ से?
0: इस प्रजाति के सुअर को आप रांची वेटरनरी कॉलेज काके रांची से संपर्क करके आप ले सकते हैं, या हम लोगों का सरकारी फार्म है होटवार रांची में, आप वहाँ भी जाकर संपर्क करके आप सुअर प्राप्त कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, सुअर मतलब कौन से ऐसी बीमारी होती है जो सुअरों को बीमारी से बचाव के लिए क्या क्या?
0: सुअर में तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है, एक चमड़ी की बीमारियां बहुत ज्यादा होती है ना सुअर में, चमड़े के बीमारियों से बचाव के लिए उनको हर 3 पर परजीवी के विरुद्ध जो दवा दी जाती है डीवर्मिंग बोला जाता है, तो वो डीवर्मिंग कहते रहने से प्रति 3 पर डीवर्मिंग करना चाहिए, उससे हाँ चमड़ी की बीमारियां नहीं होती। यदि फिर भी चमड़ी की बीमारियां हो गई तो आप उनको सल्फर वगैरह लगाकर बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। एक सबसे जानलेवा बीमारी होती है सुअरों में जो इंसानों में भी आती है, जिसको स्वाइन फीवर बोला जाता है, विषाणु से आने वाली बीमारी है, और इस बीमारी को पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप सुअर को देखेंगे तो वो लड़खड़ा का चलेगा इस बीमारी में, उसको तेज बुखार होगा और शरीर पर उसके पीले रंग की फुंसियां आएगी, पतला दस्त होगा, तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे तो आप मान के चलिए ये स्वाइन फीवर हो सकता है, और तुरंत आपको संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके इसका इलाज करना चाहिए।
1: अच्छा सर, बकरी पालन व्यवसाय इस क्षेत्र के लिए कैसे रहेगा?

0: इस क्षेत्र में जंगल की कोई कमी नहीं है और बकरी एक ऐसा प्राणी है जो झाड़ पत्ती खाकर ही अपने उपजीविका चलाता है, तो इस क्षेत्र के लिए बकरी पालन बहुत ही लाभकारक व्यवसाय है और किसानों को मैं तो कहूँगा बकरी पालन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसमें लागत कम है, भोजन का कोई खर्चा करना नहीं है और आमदनी बहुत ज्यादा है।
1: इनको खाने के लिए क्या दिया जा सकता
0: है? बकरियां झाड़ पत्ती पर ही अपनी उपजीविका चलाती है और यहाँ पर कटहल सूखी ये पेड़ों की बहुत मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए भोजन के लिए बकरियों को विशेष कोई भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आप पेड़ पौधे बांस का पत्ता, कटहल पत्ता, सूठी, शीशम पत्ता आदि आप जंगलों से लाकर आप उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आप स्टॉल फेड यदि बकरी रखना चाहते हैं, यदि बांधकर रखना चाहते तो फिर उसके लिए आपको कुटी खरीदना पड़ेगा, चोकर खली इस तरह से आप दे सकते हैं।
1: अच्छा सर, बकरी में कौन इस क्षेत्र के लिए प्रजाति?
0: इस क्षेत्र की एक ओरिजिनल प्रजाति है ब्लैक बंगाल, जो इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। मांस की क्वालिटी सबसे उच्च प्रति की होती है। ये वर्ष में 2 से 3 बच्चे भी देती है, एक बिहान में 2 से 3 बच्चे भी देती है। इसमें सभी खूबी अमी है कि इसका वजन कम होता है और इसका दूध उत्पादन बहुत कम होता है। इतना दूध कम देती है कि वो अपने बच्चों के लिए भी दूध पूरा नहीं कर पाती है। इसे इसमें बहुत सारे बकरी के बच्चे भूख से मर जाते हैं क्योंकि बकरी दूध बहुत कम देती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्लैक बंगाल बकरी के साथ साथ बीटल बकरी को भी साथ में पालेंगे तो आपकी दूध की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि बीटल नस्ल की बकरी होती है वो 1.5 से 2 लीटर तक दूध देती है प्रतिदिन। हाँ, तो इससे क्या होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप बीटल नस्ल की भी बकरी साथ में पालिए ताकि वो भरपूर दूध देती है, तो उसका दूध आप ब्लैक बंगाल के बकरी को पिला सकते हैं।
2: पशुपालन से लाभ एवं उनका समुचित देखभाल के संबंध में बातचीत करने के लिए डॉक्टर आर गोंगले जी, प्रेमलाल कलुंडिया, सेलाय सिंकू, चंद्रशेखर तामसोए और कुशल चंद्र मुर्मू, आप सबों ने आकाशवाणी चाईवासा को अपना बहुमूल्य वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार,
3: जोहार, जोहार।
4: श्रोताओं, अभी हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी ले रहे थे पशुपालन से लाभ, देखभाल और सरकार की योजना। इस भेंटवार्ता के बाद आइए हम सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं इस होलोगीत से।

श्रोताओं, इस होलोगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सुखदेव नगर में विशाल हेल्थ कैंप लगाया, जहां सैकड़ों लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह और महापौर रोशनी खलको उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशनपुर विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दावा आपत्ति, मतदाता दस्तावेज सत्यापन और सुनवाई की व्यवस्था का जायजा लेते हुए इसे त्रुटि रहित बनाने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के बिरसा चौक से लेकर सेल सैटेलाइट चौक तक बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है। इस कानूनी आदेश पर विस्तृत जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अविनाश अखर ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। सिमडेगा के कुरडेग थाना क्षेत्र अंतर्गत कसडेगा बस्ती में आज एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई घर के पास स्थित कुएं में नहाने गए थे और पानी अत्यधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। देवघर में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की अध्यक्षता में आज पुलिस पदाधिकारियों की मासिक अपराध की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी दुर्गा पूजा और त्योहारी सीजन के मद्देनजर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सुरक्षा खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। रांची में आज दक्षिण पूर्व रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग और एथलेटिक्स सहित 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 690 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: aimatan ta iknabu balabadra alda ondo waknya jolke paite heroria duren ela arpa mien bepada jagar bu aimia tisinge dinre takniki siksharia esu durkarmina gunongmina ina lagatte takniki siksha biserbu bepada jagar bu aimia japagartana kin sankar siddu ondo jagnath hesalote ela marbu aimia ಇಂತನ ಹಾಗ ಬಂದುಕೊ ಎಲ್ಲ ತಸಿಂಗ್ ಮೇ ಪುಲ್ಲೋಲಿಂಗ್ ವೆಪಟಾಕನ ಎಂತೆ ಅಕಿಂತೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಸಕಿನೆ ಜೋರ್ಗೆ
1: ಜೋರ್ ಜೋರ್
0: ಎಂದು ಮರ ಅಬೆನ್ ಹಾಗಕ್ಕೊ ಒಂದು ರೂಮ್ ಜೊಕ ಜಾಗ ರಕೋಬೇನ್
1: ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ತಮ್ ಶಂಕರ್ ಸಿದ್ದು ಹತ್ತು ಚಿಮ್ಮಿಸೈತ್ ಕಾಂತನಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾಜ ಮಹಾಸಭಾ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ್ ಹರಿಗುಟ್ಟು ಚೈಬಸರ್ಲಿ
0: ಇದು ನೋಯಿಲದ ಅಬೆನ್ ಚಿನ್ನ ಅಬೆನ್ ಚಿಕ್ಕತನೆ ಬೈಟ್ಕೋ
1: ನಾ ಅಬು ವರ್ತಮಾನ ರೇ ᱦᱚ ᱵᱟᱥᱟᱨᱤᱭᱟ ᱚᱞᱯᱟᱲᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱤᱯᱤ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱤ ᱞᱤᱯᱤᱛᱮ ᱯᱚᱱ ᱚᱞᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱟᱫᱤᱝᱟᱛᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱤᱭᱟᱨᱟᱨ ᱪᱮ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱚᱯᱟᱨᱮᱴᱟᱨ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱚᱯᱟᱨᱮᱴᱟᱨ ᱨᱩᱯᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ
0: ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱭᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱞᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱵᱚᱞ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱛᱤ ᱟᱨᱮᱭᱚ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱟᱨᱮᱭᱚ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱞᱮᱛᱟᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱥᱤᱝ ᱮ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱡᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱞᱮᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱯᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱟᱭᱨᱮ ᱡᱩᱠᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱭᱴᱤᱟᱭᱪ ᱰᱤᱯᱞᱚᱢᱟ ᱤᱱᱮᱱ ᱯᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱤᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮᱨ ᱫᱚ ᱟᱭᱴᱤᱟᱭ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱰᱤᱯᱞᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱯᱞᱚᱢᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱤᱯᱮᱱ ᱤᱯᱮᱱ ᱤᱯᱮᱱ ᱤᱯᱮᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱯᱞᱚᱢᱟ ᱦᱩᱵᱟᱣ
0: ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟ
1: ᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱯᱞᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱢᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮᱨᱚ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱵᱚᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱟᱭᱩᱢ ᱨᱮ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱟᱭᱩᱢ ᱨᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱱᱮᱱ ᱵᱷᱤᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱝ ᱠᱟᱡ ᱚᱲᱮᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱱᱮᱱ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱵᱤᱴᱟ ᱫᱮᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱫᱤᱭᱟ
1: ᱱᱮᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱞᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ
0: ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ
1: ᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮ ᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱵᱟᱭᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱡᱽ ᱡᱟᱪᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱪᱤᱡᱽ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱪᱤᱡᱽ ᱨᱮ
0: ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱡᱮᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱮᱵᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱤᱯᱤᱞᱟᱹᱝ ᱨᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱯ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱩᱱᱩ ᱫᱤᱯᱤᱞᱟᱹᱝ ᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱢᱤᱧ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱴᱟᱭ ᱠᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱠᱟᱹᱣ ᱵᱟᱭ ᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱣᱟ ᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱤᱴᱤ ᱩᱱᱠᱩᱲᱩ ᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱥᱤᱴᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱥᱚᱵᱥᱮ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱪᱤᱡᱮ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱤᱭᱮ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱩᱥᱮ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱛᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱩᱯ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ
0: ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟ ᱟᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱵᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤᱜᱮ ᱪᱤ ᱱᱮᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱮᱱ ᱫᱤᱯᱤᱞᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱩᱱᱠᱩᱲᱩᱭ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱲᱩ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱜᱟᱲ ᱪᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱯᱤᱱ ᱟᱯᱤᱱ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ऐसा पूरा चीज इनका में ना अब किताब रूप ते अपना वो ऑल पढ़ाओ या ना अब मेर कहानी के अगर वो किताब रूप रो उल्लंघनते अब पढ़ाओ या इन दे ना मोलंग रे हिमी ना जा का उड़ उठाना इन्हें इन आगे अगर एक तकनीकी रूप रे फिल्म चे पिक्चर रूप रे या ऑडियो रूप रे इन्हें ना जब वो आयुमिया चीज वो नेलिया वो इन दे इन्हें ना तुरंत रा वो इन्हें रिया कहानी कि नरे जाना रो अब जो इन ताके को जगरा बुत इन्ते इन्हें तुरंत रे इन्हें उड़ रुके टाइप हुए ना चल के अगर वो मैंने कि मेर कहानी इन्हें इन्हें का फिल्म रूप रे अगर भाई के नर तुरंत रे इन्हें उड़ टाइप
0: तो मन फिल्म को लेने ना दो अब एन तकनीकी रूप लिखाते हैं कंप्यूटर लिखाते हैं बायो होता ना
1: ये
0: तो इनरे जैसे ना वर्ष में रील्स को भी मने या दूरें को भी मने एल्बम को ना को सभी ने इन्नत गए
1: बायो सभी ने इन्नत गए बायो इन्तल
0: सर की अंडो नेंद्रिया लापा अब समाज चिल के ना मतलब ना
1: अगर लापा पाबू मने रे दो ना अब हुदरे कहीं ना कहीं उल पड़ाव रे जो को ये तयम ते मिना अब लेकिन एनरो ना अब आयरपा ऐसो स्पीड तेज तेज तब बढ़ाव तना इन्हें एनरे ऐसो पूरा जगह रे अब ना मिना रे लापा डेटन चीज भी नल दही है ना चिल के जाता रे दुकान रो अब बाजार पार भी नल को इंता कहीं ना कहीं अब ये समाज समुदाय रन को अब इंता रे लापा को डेटन पार्टी के थे इनका क्या अब जाना तो जाना ऑफिस रिया पार्टी इन्हें इंता आरो ऐसा पूरे लापन तन गया पार्टी के थे उनको इनका की स्कूल कॉलेज कर रहे हो ना हर स्कूल कॉलेज कर रहे हो हर ऑफिस रे हर दुकान रे सब इन तेरे कंप्यूटर और क्या था ना उनको कंप्यूटर चलाओ तन को इंता आरे दूर कर हो बनता
0: है
1: इन्हें कंप्यूटर को बेतन रहते हैं इन्हें इन्हें फिल्टर अब पार्टी को अब वो नाम दे
0: कंप्यूटर अब जैसे अबन नंदे बड़ी जानकारी मिला कि कंप्यूटर चिमिते ते एतन ते अदर करना तो इनका तो स्कूल रे लली मिना गया या को एतन तन गया तो एन रे चिमित नो ए ते एतन ते अदर कर या ओकन को एतन ते अदर कर मूर्त
1: इन रिया मूर्त बोलर तो ना वर्ष में एसो पढ़ेंगे एसो पूरे स्कूल प्राइवेट सेक्टर रे स्कूल कर पूरे ते मिना
0: हां
1: सी प्राइमरी लेवल ए ते गे आको कंप्यूटर को एतो कोतना ऐसा पूरे जानकारी ना आपको तार इनका हुआ हुआ कि क्लास टेन जो कि एक बटन बटन थे ऐसा बनिए कंप्यूटर में पकड़ो को वही हुआ इन रिया सब बनिए टाइप है इन दो आपको चिल के मैट्रिक को पास है इंटर लेवल रिया जो भी फॉर्म को हो जुए इन्हें ना आपको तक ऊपर
0: दे दे
1: दिया ना चिल के अगर इन्हें ना कबू मैंने या मुनसु में अबू ऑल पढ़ाओ के अंदर तो ना इन रिया ऑनलाइन लग रहा अबू ऑनलाइन सेंटर वो सेनो इन दुख तंगी के तब वो
0: पार्टी नामे हिना एतके ते एन उड़ उसमें तो कावड़ बीते दूर करा नीना पार्ट मने एतके ते मने अपन ते उकना पार्टी दे युवा उकना लाभ मिल दी अपन ते इनम पार्टी दे इन ते
1: सर का जिना अगर नीना रे अब जगह रे तना तकनीकी ज्ञान रे अगर वो ले लिया अगर अब तेरे तकनीकी ज्ञान रे वो मने अर्थ ना वर्षम कंप्यूटर के बाद मोबाइल रे चलन ऐसो पूरे कंप्यूटर रे लगभग पार्टी अब मोबाइल तेरा हो बा मोबाइल रे अगर तकनीकी हिसाब से बोले लिया ना जैसे खेती कैसे करना है नीना अगर इंगाकु को जाए रोबो कुले हुआ इन दो ने नीना रे अगर एतन लगे दाबू ना निका गमा समय अब वो बिटनते हुआ हुआ इन समय सी चिलके को सही है बाबा चिलके को है रिया इन ना अब पार्टी तन दौरान रखे को एतो दई है इन इन रखे अगर अब मोबाइल या तकनीकी रूप रे एतन रे तुरंत रे 10 मिनट 5 मिनट रे तुरंत रे कागे ने निका को सही है ने निका को हरिया ने निका मरंगे ने निका को इरिया तुरंत रे ने ना तो ची इन्हें ज्ञान से तुरंत रे ना
0: नमो अब तो जैसे सीओ में एक तो तकनीकी मन ऐसा समय रे तकनीकी पार्टी में तो हम बाबा मैं तो सीओ तो अब कोर्स को तो काबू दी ये कोर्स तो मैं तो ना बस इन कंप्यूटर को या जान अब पढ़ाओ रहा मैंने साल भर 6 महीने इनका कोर्स वो पढ़ाते हुआ
1: ये
0: ते मैंने अब हिनाते ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟ?
1: ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱟᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱡᱟᱭ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱮ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱛᱟᱭᱩᱜ ᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱛ ᱨᱮᱵᱚ ᱮᱛᱚ ᱤᱨᱤ ᱠᱚᱠᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱤᱵᱩ ᱠᱩᱞ ᱠᱚᱠᱟ ᱮᱱᱮ ᱮᱱᱛᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱨᱮ ᱮᱱᱮ ᱮᱱᱛᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱢᱟᱨ ᱛᱟᱭᱩ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱮᱱᱨᱮ ᱥᱟᱯᱚᱴᱤᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱨ ᱫᱚ ᱮᱵᱤᱥᱤᱰᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱭᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱥᱟᱛ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱᱚ ᱮᱥᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱟᱭ ᱥᱮᱛᱟ ᱩᱴᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱪ ᱢᱤᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ
0: ᱯᱟᱭᱴᱤ
1: ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱥᱮᱛᱟ ᱮᱛᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱠᱴᱩ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱚᱯᱩᱨᱮ ᱵᱤᱛᱤᱭᱮᱢ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱩᱫᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱥᱩᱭ ᱥᱩᱭ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜᱽ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱜᱟᱭ ᱡᱩᱲᱤᱭᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮ ᱡᱚᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱩᱱᱩᱭ ᱵᱤᱛᱤᱭᱮᱢ ᱟᱱᱚ ᱡᱚᱣᱟᱨ
1: ᱮᱥᱚᱯᱩᱨᱮ
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आई मतन ताई कना वो बेपटे जगर तकनीकी शिक्षा विषय है। जपगर ताई कना कि शंकर सिद्धू अंडो जगन्नाथ है साल होते इन दो हवा कड़ी इंतन सनाम हागा अंडो मिसी को तिसी कुरुड़ू चिल के बुझेर गल किड़ा नको निकोल सकम ते जुड़ू तो बोल कुलिया निकोल सकम को और कुलते डगर को दो आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा पिन कोड रेल पीपी बरगुल मियर रे इन मार तेसी करोड़ निंतारगबू होकाता आ निंतारगबू बगुड़ीते मार सेनो सेनो ते अलिंग जगन्नाथ हिसाब पाए ते सलाम को सिविल जोहार।

जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, जल है तो जीवन है, जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है। बच्चों, संरक्षण करना मतलब सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, है ना। जीवन जल पर निर्भर है और जल की स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उसकी सुरक्षा करना, उसको संरक्षण करना, उसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, जल को प्रदूषण से बचाएं और पानी की हर बूंद का संरक्षण करें। तो एक बात बताइए बच्चों, आज मैं ये जल के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि आज विश्व जल निगरानी दिवस है। माफ कीजिए बच्चों, विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को पानी की गुणवत्ता की निगरानी और नदियों, झरनों, झीलों तथा अन्य स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता अभियान लोगों को अपने आसपास मौजूद जल संसाधनों की स्थिति को समझने और उसके संरक्षण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। सबको करना है बच्चों, है ना, आपको भी, हमको भी, सबको करना है। यह सबसे पहले 2003 में एक वैश्विक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को जल संसाधनों की सुरक्षा और निगरानी से जोड़ना था। हम लोग को समझना है कि हमारा जो जल है, पानी है, हम उसको कैसे बचा के रखें, कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वच्छ रखें, है ना। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को और समुदायों को स्थानीय जल स्रोतों की स्थिति के प्रति जागरूक करना है, है ना। पानी की नियमित निगरानी से जल की गुणवत्ता के कुछ बुनियादी संकेतों को समझने में मदद मिल सकती है, है ना। स्वच्छ स्वच्छ और सुरक्षित जल का सीधा संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य हम सबकी, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और आर्थिक गतिविधियों से है। अगर जल स्वस्थ रहेगा, गंदा रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो उसको तो स्वच्छ रखना होगा ना, तब ना हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा पानी पियेंगे, साफ पानी पियेंगे, तभी तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना। नियमित निगरानी से जल संसाधनों की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है और ऐसे बदलावों की पहचान की जा सकती है जिसके आगे जांच की जरूरत हो। अगर कुछ है, गंदगी है, कुछ भी है, तो उसको किस तरह से साफ करें, है ना, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। जल की गुणवत्ता की निगरानी लोगों को जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और उपलब्ध मीठे पानी के संसाधनों की जिम्मेदारी इस्तेमाल के महत्व को समझने में मदद करती है। मान लिया कहीं पर आपने देखा होगा ना बच्चों, कहीं कहीं आसपास में किसी नल का पानी हम नहीं पीते हैं, कहीं और का पानी हमें अच्छा लगता है, तो क्यों, सबकी गुणवत्ता में अंतर होता है, तो उसकी जांच करनी होती है, उसको अच्छा बनाना होता है। अगर खारा है तो उसको किस तरह से हम उसको फिर सही तरीके से करें, उसके जांच की जाती है, उसके गुणवत्ता की जांच की जाती है, ठीक है। वर्ष 2026 में विश्व जल निगरानी दिवस है ना, आज जो 18 सितंबर को हम मना रहे हैं, लेकिन जल निगरानी और जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों
अलग अलग समय पर आयोजित हमेशा की जाती रहती ताकि लोग जागरूक रहें। ठीक है, ये सबकी है, सबके लिए जरूरी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जल संसाधनों का संरक्षण केवल सरकारी एजेंसियों या फिर पर्यावरण संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। जागरूक नागरिक और स्थानीय समुदाय भी नदियों, झीलों, धाराओं और अन्य जल स्रोतों की सुरक्षा के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों। कहीं मान लें आप स्कूल से आ रहे हैं या घर में कहीं नल खुला हुआ है, बह रहा है, तो पानी बेकार हो रहा है, उसको आपको बचाना, बंद कर देना है। ठीक है, उसको गंदा नहीं करना है। कहीं अगर गंदगी है जहाँ से हम पानी लेते हैं, आसपास गंदगी, उसको साफ भी करना होता है, वहाँ गंदा गंदगी नहीं फैलानी होती है। ठीक है, तो विश्व जल निगरानी दिवस 2026 का संदेश स्थानीय जल संसाधनों की स्थिति को समझने, जल गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है ना। सबके लिए करना है, सबको जिम्मेदारी निभाना है। ऐसे प्रयास

0: से मुक्त रखना, वर्षा जल का संरक्षण करना और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना हम सभी का साझा जिम्मेदारी है। जल संरक्षण केवल प्रकृति की रक्षा नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, समृद्ध समाज और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। आइए आज से हर बूंद को सहेजने का संकल्प लेकर जल सुरक्षित एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। ठीक है, ये सब के लिए है। तो हमने आज क्या सीखा बच्चों? विश्व जल निगरानी दिवस पर तो आप सब ध्यान दीजिएगा ना, और आपको गंदा पानी नहीं पीना है। अभी बारिश का मौसम है, आपको गर्म पानी पीना है, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है ना, और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी और सफाई पर बिल्कुल एकदम ध्यान देना है। ठीक है, तो चले हम कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम? कुछ जरूरी संदेश सुनेंगे और कहानियाँ सुनेंगे, है ना, और गाने भी सुनेंगे, है ना। चलिए पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1499 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: चलिए जानकारी ले लेते हैं, फिर हम एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर अस्थायी व्यवस्था है, जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाण

आय प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो। पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो। परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी।

0: 200 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
0: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
1: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
0: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
2: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
0: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
0: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
1: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
0: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: चलिए आज हम लोग एक कहानी सुनते हैं, शेर और चूहा की कहानी। एक बड़े जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ एक छोटा सा चूहा आ गया। चूहा बहुत नटखट था और वह शेर की पीठ पर खूब कूद रहा था, उछल कूद करने लगा। खेलते खेलते चूहा शेर की नाक पर पहुंच गया, जिससे शेर की नींद खुल गई। शेर को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने बड़े पंजे से छोटे चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर से कांपने लगा और बोला, हे जंगल के राजा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो शायद कभी मैं आपके काम आ सकूं। शेर को चूहे की बात पर हंसी आ गई। उसने सोचा कि इतना छोटा सा जीव मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने जाल बिछाकर शेर को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। शेर दहाड़ने लगा, लेकिन वहाँ जाल से निकल नहीं पा रहा था। वहीं से नटखट चूहा गुजर रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत वहाँ दौड़कर आया। चूहे ने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा बोला, राजा जी घबराइए मत, मैं अभी आपको बचाता हूँ। यह कहकर चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और समझ गया कि संसार में कोई भी जीव छोटा या कमज़ोर नहीं होता है। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति छोटा या कमज़ोर नहीं होता, समय आने पर हर कोई किसी ना किसी की मदद कर सकता है। इसीलिए किसी को भी आप छोटा या कमज़ोर नहीं समझिए, है ना? तो चलिए हमने सुनी कहानी और आगे एक हम कविता सुनते हैं।

0: हमारे साथ है अंजिष्णु, जो एक कवि हैं। आइए हम एक बार उनके कविता को सुनते हैं।
1: जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल के बातें कहता है, जो लाख मुसीबतें सहकर भी अग्निपथ पर रहता है, कर्ण और एकलव्य की भांति परिचय जिसकी जाति नहीं, कर्ण और एकलव्य की भांति परिचय जिसकी जाति नहीं, क्या करना है क्या ना करना गोत्र जिसे बतलाती नहीं, अपनी बुद्धि के बल पर जो जग में ख्याति पाता है, अपनी बुद्धि के बल पर जो जग में ख्याति पाता है, मानवता को धर्म बनाता संविधान लिख जाता है, झुककर रहने से ज्यादा मरना जिसे स्वीकार मरना है स्वीकार जिसे, झुककर रहने से ज्यादा मरना है स्वीकार जिसे, आंखों में निर्भयता जिसकी और सबसे था प्यार जिसे, कनक छत्र ना थी सर पर, कनक छत्र ना थी सर पर वो सिंहों के जैसे थे, कनक छत्र ना थी सर पर वो सिंहों के जैसे थे, कोई पूछे तो बतला देना बाबा साहेब ऐसे थे।
0: वाह, अंजिष्णु की कविता बड़ी जोरदार थी, बहुत अच्छी थी। यूं ही हमें कविताएं सुनाते रहें अंजिष्णु, फिर हम कविताएं इनकी सुनेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम।
1: जो अंधियारों में मानवता की ज्योत लेकर आते हैं, जो अंधियारों में मानवता की ज्योति लेकर आते हैं, जो महकुमों के दर्दों को चीख चीख बतलाते हैं, जिसे

0: जाति पाति का ढोंग नहीं सब एक दिखाई देते हैं। जिसे जाति पाति का ढोंग नहीं सब एक दिखाई देते हैं, जिसे अपने दुख से पहले बच्चों के रुधिर सुनाई देते हैं, जो बंदूकों को तजकर शिक्षा को ढाल बनाता है, जो बंदूकों को तजकर शिक्षा को ढाल बनाता है, जो विवेक से सिंहासन की ईंट से ईंट बजाता है, जो कहता है स्वतंत्रता से पहले एक छत्र हमें होना होगा, जो कहता है स्वतंत्रता से पहले एक छत्र हमें होना होगा, कोई भी हो कारण लेकिन मानवता नहीं खोना है, जो जाति गोत्र और कुल के बिना सबको अपना कहते हैं, जो जाति गोत्र और कुल के बिना सबको अपना कहते हैं, वो वीर सिंह बाबा साहेब सबके दिल में रहते हैं।
1: वाह, बहुत अच्छा है जिष्णु। कार्यक्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शायद अंजिष्णु की कविता के बगैर अधूरा है, तो हम एक कविता और सुनते हैं अंजिष्णु से। चलिए,
0: तो ये रश्मि रति के द्वितीय सर्ग का एक भाग है।
1: ठीक है, चलिए।
0: हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, जन्मा तो तू क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी, नहीं पूछता कोई कि तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी।
1: इसी के साथ आज का हमारा रणनी दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए।

0: प्लान बनाइए।
1: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी नियुक्त। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों को सराहा। गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची पुनरीक्षण को त्रुटि रहित बनाने का दिया निर्देश। खूंटी और हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो अलग अलग अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़। 15 अपराधी गिरफ्तार, 36 मोटरसाइकिलें बरामद। और रांची में 3 दिवसीय रेलवे स्पोर्ट्स मीट शुरू। 8 खेलों में दम दिखाएंगे 690 खिलाड़ी। डीआरएम ने एक साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जताया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के अपने फैसले को हाईकोर्ट में सही ठहराया है। सरकार का तर्क है कि व्यापक गड़बड़ियों से परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक बरकरार रखी है और जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सुखदेव नगर में विशाल हेल्थ कैंप लगाया, जहां सैकड़ों लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इतिहास में पहली बार देश के प्रधान सेवक गरीबों और वंचितों के कल्याण की वास्तविक चिंता कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर के चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, शहर हो, चाहे कस्बा हो, सभी लोगों ने एक दिया आशीर्वाद के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना की भगवान से। और जिस प्रकार से देश आजाद होने के बाद पहली बार गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग को ऐसा महसूस हुआ कि देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी गांव के गरीबों के बारे में चिंता करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इस सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों के परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति के लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। इस योजना की मूल भावना को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
3: भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई। इसके तहत करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। साथ ही अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये विकास हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा।
2: प्रधानमंत्री के इसी संकल्प का सीधा असर अब सलगी पीढ़ा पत्थल गांव के धरातल पर दिख रहा है। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, जिससे हर मौसम में भारी परेशानी होती थी।
4: मेरा नाम अनिता देवी है। पहले मिट्टी घर में रहते थे, बहुत चूता था। अब ढले घर बन गया, मोदी सरकार, धन्यवाद।
5: मेरे नाम मंत्री दीवी है। पहले तो मिट्टी का घर था, उसमें बहुत चूता था। अभी जो पीएम आवास मिला है उसमें अभी ढलाई कर दिए हैं और उसमें रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं मोदी सरकार को।
2: साफ है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना सिर्फ पक्के मकान ही नहीं दे रही, बल्कि समाज के सबसे पिछड़े आदिम जनजातीय परिवारों में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया विश्वास भी पैदा कर रही है। सलगी पीढ़ा पत्थल गांव के चेहरों पर आई ये मुस्कान बदलते झारखंड की एक जीवंत तस्वीर है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दावा आपत्ति और मतदाता दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का जायजा लेते हुए इसे त्रुटि रहित बनाने का निर्देश दिया।
6: अभी कितने भी केसेस है उन लोग डिस्पोजल करते जा रहा है, जहाँ पेंडिंग रख रहा है उसका भी देखे उन लोग डिस्पोजल करें। इससे वो सब यहाँ पर कुछ वोटर का तरफ कटनी है, उसके पेपर जमा करना पड़ जाएगी, फिर भी एक त्रुटि रहेगी मतदाता सूची निर्माण करने के लिए सभी वोटर से अनुरोध है।
0: उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आयोग द्वारा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा की गई। श्री तिर्की ने बताया कि यह विशेष प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर 2026 में रांची विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे।
7: इस तरह का योजना इसलिए किया जा रहा है कि हम शिक्षा के माध्यम से हमारे आदिवासी बच्चों को संवैधानिक अधिकार के साथ साथ अपने भविष्य को बेहतर करने के, ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनके माँ बाप बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाता लिखाता है और बच्चे बेहतर से बेहतर कर सकें, अपना भविष्य को बेहतर करें, इसके लिए इस तरह का योजना किया जा रहा है।
0: खूंटी और हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई

0: कर दो अंतरराज्य वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग के अनुसार साइको क्षेत्र से मास्टरमाइंड गुरुदयाल सहित 8 आरोपी दबोचे गए। वहीं हजारीबाग के पेलावल में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। दोनों जिलों से चोरी की कुल 36 मोटरसाइकिलें और एक टोटो बरामद किया गया है। रांची में आज दक्षिण पूर्व रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग और एथलेटिक्स सहित 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 690 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर मंडल रेल प्रबंधक ने युवाओं को खेल से जोड़ने और आगामी 1 वर्ष में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही।
1: विभाग के सारे कर्मचारियों के बीच में एक समन्वय जुटाने के लिए एक प्रयास किया है कि हमारे पास इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए अपने ही जो सारे पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ में एक अच्छा कार्य करें, तो उसके लिए जो है ये स्पोर्ट्स किया जा रहा है।
0: 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप के लिए रांची में 25 सितंबर को झारखंड टीम का ओपन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप 10 से 21 अक्टूबर तक झांसी में आयोजित होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। जेपीएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी नियुक्त। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों को सराहा। गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची पुनरीक्षण को त्रुटि रहित बनाने का दिया निर्देश। खूंटी और हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़। 15 अपराधी गिरफ्तार, 36 मोटरसाइकिलें बरामद। और रांची में 3 दिवसीय रेलवे स्पोर्ट्स मीट शुरू। 8 खेलों में दम दिखाएंगे 690 खिलाड़ी। डीआरएम ने 1 साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जताया संकल्प। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
3: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
2: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
4: भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
5: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
8: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
7: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
8: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
7: एनएसबी कराने।
8: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्देश पर विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जामताड़ा जिला के कारीगरों एवं शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यह केवल आर्थिक सहायता लाभार्थी को नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि उसके हुनर को उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनाता है।
1: जामताड़ा पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध

0: लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। जामताड़ा पुलिस ने 11 सितंबर को जिले के नारायणपुर एवं करमाटांड थाना क्षेत्र से कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि
1: साइबर अपराध के प्रति लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कल ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि करमाटार और नारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधकर्मी अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
0: झारखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध एवं सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर 9 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रविंद्र राय के नेतृत्व में जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पूर्व मंत्री श्री राय ने कहा कि
2: राज्य सरकार अपने मंत्रियों और अपने अधिकारियों को, अपने दलालों को, उनको बचाने के लिए सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती और सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। छात्रों ने जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो जब आंदोलनरत हुए, पुतला दहन करने गए, तो प्रशासन से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने, उनके पाले हुए अपराधियों ने विद्यार्थियों और नौजवानों पर डंडे चलाए और दौड़ा दौड़ा कर पिटने का काम किया। झूठे मुकदमे किए गए, वो मुकदमा वापिस होना चाहिए।
0: जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जनता दरबार जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जनता दरबार में लोग अपनी समस्याओं को सीधे उपायुक्त के समक्ष रख रहे हैं। लोगों की समस्याओं का निराकरण भी समयबद्ध हो रहा है। पिछले मंगलवार को उपायुक्त ने 45 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण की दिशा में पहल की। मौके पर उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि
3: जनता दरबार में टोटल 40 से 45 लोग आए थे, जिसमें एक जो मेजर समस्या बहुत लोगों की थी वो था बिजली बिल से संबंधित। बहुत लोगों का बिजली बिल बढ़ा हुआ आ रहा है और उसमें कुछ इशू है। दूसरा था लैंड एप्लीकेशन से रिलेटेड, बहुत लोगों का मुआवजा नहीं मिला है या उसमें देरी हो रहा है, इससे संबंधित था। तो उसमें ये है कि बहुत कुछ पैसा भी विभाग से आना है, वो नहीं आया है, जिसके कारण मुआवजा में देरी हो रहा है। तीसरा था बरसात के कारण कुछ लोगों का घर गिर गया है, तो अगुआ आवास और अम्बेडकर आवास के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, वो समस्या था। और चौथा मेजर जो ज़्यादा आवेदन या रिक्वेस्ट आया है वो कन्यादान योजना से रिलेटेड है, जिसका पेमेंट आ चुका है विभाग के द्वारा, तो उसका पेमेंट हम लोग जल्दी जल्दी करवा देंगे।
0: जामताड़ा जिले भर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना भक्ति भाव से की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
4: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, ग्राम उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो एवं कैलाश और परिवार के सभी लोग। अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अच्छत प्रसाद। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। न्यू कॉलोनी टुंगरी चाईबासा से पंडित आर के पाठक, अनिता मिश्रा, रिया पाठक, प्रिया, सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी और प्रियंका। बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्र सेन प्रधान, सुदर्शन

प्रामाणिक सुशीला श्यामदेव नायक और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अन्नू बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का ये गीत, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर का ये गीत। आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की बोल।

बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इसी गीत को सुनना चाहा था गोला बाजार बक्सर से। श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुखचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। बेरडी से हुकुम करमकार, सुनीता करमकार, हार्दिक करमकार, प्राची करमकार, तनु करमकार। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है आपकी कसम। संगीतकार आरडी बर्मन। इस गीत को सुनना चाहा है वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी मधु और जयश्री देवी। बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विकी गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। कुछ आई ईचा हाथों से गोला राम लोवादा, लुदरी लोवादा, सुरती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा, विंजना लोवादा। खमहरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। सहावा टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की। पसंद आप सबों की थी। परानिमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, मोहुलडीहा सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अनु, तन्नु, भाई नंदू महतो, आयुष महतो और गीतेश महतो, बड़ा बाम्बो से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो, अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू, ग्राम परजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया, ग्राम जामठी अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कांसलेकर, दिनकर, विमल, विशाखा कांसलेकर, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पाद

0: उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేనా. इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म आशिकी का ये गाना. पसंद आप सबों की है. सरायकेला पारापुर देसावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी सुरुमानी मुंडरी हीरामानी मुंडरी हिमांती मुंडरी डोबरो मुंडरी साजन मुंडरी सिद्धेश्वर मुंडरी पारापुर शिवाजी डोबरो मुकेश कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धि बोस सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय गाजीपुर से अवधेश राय श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक जयतेग बीरक मीका बीरक गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम एम फारूक शेख अब्दुल सत्तार अंसारी महुलडीहा सोनवा से नंद किशोर महतो राधामणि महतो रविवारी बंदनी संतोषी दीपक संतोष राहुल अनु तन्नु भाई नंदू महतो मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक अनुसुईया नायक सागरिका नायक देवाशीष नायक गुलशन नायक और किशोर महतो. आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म आशिकी का ये गाना.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आसिकी का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे कर्टेन रेजर बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

क्लब योजना का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों को मिलेगा विरासत से जुड़ने का अवसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में एमबीबीएस के लिए 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विभिन्न कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत कर
1: मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: हर कंपटीशन एक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
1: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
3: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
1: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
4: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अच्छा करेंगे।
1: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार रही। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
5: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
6: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
5: जी,
6: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहेंगे भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट. हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट. और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन. तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है. वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है. तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स.
7: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में. सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
6: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो एक बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम.
1: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है. भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी. उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है. भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है.
8: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं. एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है.
1: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
9: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था.
1: और अब बात शूटिंग की. इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने होंगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है. टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई. केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, होंगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
10: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा रहा इस बार. पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ. तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में. इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं. और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा. तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए.
1: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था. पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
10: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है. जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है. लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर. वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर.
1: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
10: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे

0: प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आए, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्यूनेशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते हैं।
1: और किरण, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
0: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉर्ट गन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
1: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
2: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
1: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्रीस्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्रीस्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
3: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
4: कितना जोश है?
3: फुल 100 of 100।
4: कितने मेडल आएंगे?
3: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
1: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
3: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
1: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
5: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
4: जो जापान कोरिया का जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
5: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
1: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
6: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
4: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
6: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
4: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
6: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
1: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
7: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई है। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
1: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
8: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट।

0: अरे मेडल है इस बार, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
1: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोत भी मान रही हैं।
2: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
1: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलट फेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं, हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
3: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do. Like, not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
1: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानु शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
4: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेज है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैनॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे, यू कैनॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
1: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह।
5: I'd love to change the color of the medal. It'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
1: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
6: अभी एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट्स जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
1: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
7: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
1: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।

0: इसी बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
1: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
2: आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 ईयर्स। मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
1: एशियन गेम्स में टेकबॉल का डेब्यू हो रहा है। ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचीन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
3: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जेनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेनजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेयरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
3: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
3: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद

0: बहुत जरूरी है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
1: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं, और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। इस बारे में भी कुछ बताएं आप।
0: देखिए 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है। इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहाँ पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था, जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो USA में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं, और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं, और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है, हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग रेसलिंग वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: भूमिका स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला फरमाइशी गीत तुलसी कुमार और के की आवाज़ों में फिल्म आसिकी 2 से। इस गीत के फरमाइश करता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बल वीरेंद्र बीरक जयतेग बीरक मीका बीरक छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही सरिता गवहानकर सिद्धांत गवहानकर प्रिंस एकांश गवहानकर विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवहानकर वैशाली गवहानकर कुमारी ध्वनि गवहानकर परी राजनांदगांव से याकूब आसमा यूसुफ आसमा इमरान आसमा इरफान आसमा जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी सोनम तिवारी आदिबा तिवारी एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम सरिता गौतम अनन्या गौतम ऐश्वर्या गौतम श्रेय गौतम कुश गौतम रिंकू टिंकू और रीना

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म काबुलीवाला का ये देशभक्ति गीत आवाज़ मन्ना डे की। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800345406 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इन्हीं संदेशों के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी

0: को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
3: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
4: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
5: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
6: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था

0: ताकि बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की 3री गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
6: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
5: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan.
6: The Pakistani side has once again been advised about the need for all military units to observe due care and respect the provisions of the relevant agreements between the two sides in order to prevent any repeat of such incidents. The incident did not cause any major damage to INS Kolkata and she remains at sea.
5: Replying to a query on the U.S. Sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said India has conveyed at senior levels of the U.S. administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation manufacturer Hindustan Aeronautics Limited, HAL, today handed over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. Defence Minister Rajnath Singh and Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu attended their handing over ceremony. HAL handed over two light combat aircraft, Tejas final operational clearance twin-seater trainer aircraft, to the Indian Air Force. It also handed over four Dhruv next-generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. HAL also delivered the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Defence Minister named the aircraft Ankur. Speaking at the event, Defence Minister Rajnath Singh expressed confidence that India will emerge as a global player in the sector and appreciated Hindustan Aeronautics Limited's efforts to indigenize defense and civil aviation technologies.
7: HAL ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट, ओवरहॉल, रिपेयर, मेंटेनेंस और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज डेवलप की। हमें HAL को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना होगा जो डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्टिफिकेशन, लाइफ साइकिल सपोर्ट और ग्लोबल मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करे।
5: Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw has said India is emerging as a trusted partner in the global semiconductor industry. Participating at a fireside chat at Semicon India 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said trust is crucial in the semiconductor industry, from protecting intellectual property and enabling global companies to design end-to-end products in India. Mr. Vaishnaw said India had set a target of training 85,000 semiconductor design engineers over 10 years and 70,000 have already been trained in 4 years. Later, talking to media, Mr. Vaishnaw said over 30 companies from one country are participating across the pavilions at Semicon India.
8: Very good response. Country roundtables have basically, see, some of the countries have come in very large contingents. We are very encouraged by it. Japan, Singapore, both of them are 30 plus companies participating in their pavilions. South Korea, many European countries, Netherlands is there, Sweden is there. And overall, the response is very good. The country roundtables are basically showing that the companies from those countries can expand their work. The governments are supporting that and looks like it's going to be a very good journey ahead.
5: Several MOUs were exchanged and new collaborations announced at Semicon India 2026 in the presence of Mr. Vaishnaw. This is Akashwani giving you the news.
9: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: The government has relaxed the sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. The relaxation is subject to condition that the quantity of stock held beyond the existing 15 days limit shall be sourced exclusively from sugar imported under Advance Authorization Scheme and Tariff Rate Quota. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said the stock holding limit for purchase from the open market shall remain unchanged and will be restricted to 15 days consumption only. The ministry said the measure is intended to strike a balance between the interests of bulk consumers and the need to maintain stability in the domestic sugar market. The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rajinagar on the 6th of next month under new identities. The group led by Arup Roy has been allotted the name Democratic Trinamool Congress and the envelope symbol. The faction led by Mamata Banerjee has been allotted the name Mamata All India Trinamool Congress and the football player symbol. In its order, the poll body said both groups would be treated as recognized political parties in West Bengal, Meghalaya and Tripura. The Delhi High Court today ordered that no victory procession should be taken out after the declaration of results of Delhi University Students' Union elections. It also asked all students' organizations and candidates to explain why electoral damages should not be imposed on them for violation of norms. A two-judge bench passed the directions after observing that there were frequent and blatant violations of the Linked Committee recommendations during the Delhi University elections. The voting was held across Delhi University campuses today.

0: trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commissioner lauds separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदाम के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में यूएई के तआवुन और शराकतदारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे महसूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जाम और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
2: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकल हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अल अक्वामी जाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है।

0: नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधा कृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नजरिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नीति आयोग ने यकुम जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फराहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के तीन अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़रा आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फराहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
3: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया।
1: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजे बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिदाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को

0: कुर का नाम दिया।
1: आज हम एक साथ तीन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, एलसीए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेंसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी हवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकत दार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज आईबीएम सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिजाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक आईबीएम के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने एलएम रिसर्च के सीओओ सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क्यादत धड़े जिमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और यह सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। यह फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नागोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुखसत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्ज हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। اور سعودی عرب کی خود مختار

तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को दो सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Y
1: ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। समय है गज़लों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं चंद गज़लें नुसरत फ़तेह अली खां के स्वर में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल में नुसरत फतेह अली खां के स्वर में चंद गजलें। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है संगम, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में ये गीत फिल्म सफर से। बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं मुकेश के स्वर में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म संबंध का ये गीत, और अब सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म पापा कहते हैं का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत। संगीतकार राजेश रोशन। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों की रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नायान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नायान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।